0: करती है सत चित आनंद, सच चित आनंदश्च इति सच्चिदा। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहने लगे जो सर्वव्यापक परमात्मा, जो अनंत परमात्मा, वो यद्यपि सर्वत्र उसकी सत्ता है, लेकिन विशेष करके भगवान ने उसे बतलाने के लिए, क्योंकि सर्वव्यापक को हम जान नहीं पाते, तो क्या कह दिया, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, का हृदय देश में विद्यमान है। तो कोई भी सत्ता है, वैज्ञानिक शोध करके और उस सत्ता को खोज लेते हैं। और यदि इस प्रकार से भगवान कहते हैं तो हृदय को स्थापित जब कर देते हैं तो हृदय में रहने वाले को भी खोज लेंगे, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस बात में सफल नहीं। ये बात किससे सिद्ध होती है, इसमें अनुसंधान, कोई कर्म, कोई प्रक्रिया काम नहीं आती। इसमें क्या काम आता है, तो इसमें अनुभव ही काम आता है। अब जो है किस प्रकार से हम इसका अनुभव कर सकते हैं, तो मैं हूं मैं बना रहा हूं, जो ये रुचि है, ये अभीप्सा है, इस अभीप्सा के अनुभव से ही सिद्ध होता है कि वो सच्चिदानंद परमात्मा कहां विद्यमान है, सर्वत्र होते हुए भी वो विशेष रूप से रुचि का जो है मने विषय होते हुए कहां विद्यमान है, तो हृदय देश में विद्यमान। जो अविषय कहा गया, जो अप्रमेय कहा गया, ऐसा वह अविषय अप्रमेय ही विषय रूप से कहां विद्यमान है, तो हृदय देश के, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में रह करके करता क्या है, तो क्या बतला दिया, का भ्रामयन, सबको भ्रमाता है, और कैसे, तो बतला दिया यंत्रारूढ़ान, ये संकेत कर दिया। जैसे कठपुतलियों को इलेक्ट्रिक के संबंध से वह सूत्रधार उन्हें नचाता है, का इसी प्रकार से वह इस हृदय देश में रह करके सबको नचाता, ये संकेत कर दिया। अर्थात सबकी प्रवृत्ति का हेतु कौन है, ये हृदय में बैठा हुआ परमा। जब तक हमें ये बोध नहीं होगा कि मैं हूं, तब तक किसी भी कामना का उदय हो सकता नहीं। जब तक कामना उदित नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार की प्रवृत्ति संभव नहीं। प्रवृत्ति होती ही तब है, मैं हूं और फिर मुझे चाहिए, तब हमारी प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रवृत्ति में भी हेतु कौन है, कहा वही, और वो कहां विद्यमान है, तो कहा हृदय देश में। अब इतना अनुभव कर लिया जिसने, अब इतना अनुभव करके के बाद फिर उसने श्रवण किया, सुना, क्या सुना, सिया राम मैं सर्वम खल इदम। कहने लगे वह परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, उस परमात्मा की सर्वत्र सत्ता है, ये उसने सुना। और ये जब सुना तो एक तरफ तो हृदय देश में सुना और उसका अनुभव किया, और अनुभव करने के पश्चात फिर उसे सर्वत्र सुना कि वो सर्वत्र विद्यमान है, जो कुछ भी है, ईशावासी मिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। कहने लगे हृदय देश में ही नहीं है, वो नक्शे लेकर के और सिख पर्यंत कहा उसकी सत्ता है, और कहा इतना ही नहीं है, जिसको तुम विषय बना रहे हो, जिसे तुम अपने ज्ञान का पात्र बना रहे हो, कहने लगे वो भी वही है, यदि किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है, तो ये सर्वम खलिदम ब्रह्म करके कहा। अब जब ये बात सामने आती है, इतना तो लोग स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा अंदर बैठा, लेकिन ये कोई स्वीकार नहीं कर पाता कि ये पुष्प भी परमात्मा है, ये चश्मा का खोल भी परमात्मा है, ये मेज भी परमात्मा है, यह जो है माइक भी परमात्मा है, ये जो है मकान भी परमात्मा, ये स्वीकार नहीं कर पाता। इतना स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा हृदय देश में विद्यमान है, लेकिन जहां से श्रुति ये कहती है, शास्त्र कहता है सर्वम सरिदम ब्रह्म, जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, तो कहने लगे यही बात समझ में नहीं आती, कुत्ते में परमात्मा कैसे हो सकता है और चांडाल में परमात्मा कैसे हो सकता, वो तो मांस भक्षी है, और इसी प्रकार से जड़ में परमात्मा कैसे हो सकता, ये सारी की सारी जो है संशय की स्थिति उसके हृदय में आती है। और जब तक संशय नहीं होता है तब तक विचार की धारा चलती नहीं है। विचार शुरू ही होता है संशय को लेकर के, क्योंकि संशय रस्सी का काम करती है, विचार मथानी का काम करता है। यदि मथानी हो और उसमें रस्सी न लगी हो तो वहां मंथन होगा, और मंथन नहीं होगा तो उसमें से मक्खन भी निकाल पाओगे नहीं। ये नियम है। इसलिए यहां से विचार की सरणी को आगे बढ़ाने के लिए संकेत किया। किसके लिए संकेत किया? तो अभी तक जो चर्चा कर दी, जो विवेक से संपन्न हो गया, जो वैराग्य से संपन्न हो गया, और जो जिसको जो वेदांत के सार के विषय में जिसने वेदांत को सुन रखा, ऐसे उस जिज्ञासु के हृदय में क्या होता है, कहा रुचि पैदा होती है, माने जिज्ञासा पैदा होती, लेकिन वो सामान्य जिज्ञासा नहीं। वो कैसी जिज्ञासा है? तो संकेत कर दिया, स्पष्टार्थ हो, स्पष्टार्थ रुचि न। और केवल स्पष्ट ही नहीं कहा, उसमें भी द्वि उपसर्ग लगा दी, विस्पष्टार्थ हो, विशेष रूप से स्पष्टतया जानने की रुचि वाला। अब सामान्य स्थिति नहीं, विशेष रूप माने उसके अंदर विशेष ललक है, विशेष उसके अंतर्गत जो है जानने की इच्छा है। अब और कुछ वह जानने को तैयार नहीं, कहता है कि पहले इसको जानूंगा, ऐसी इच्छा वाला। तो कहा विस्पष्टार्थ, विस्पष्ट रुचि वाला, जो उस विस्पष्ट रुचि वाले के लिए यहां व्याख्याकार कहते हैं आचार्य प्रसाद तह, पुनः शब्द दे दिया, पहले ऋषियों को प्रणाम किया, फिर कहने लगे आचार्य प्रसाद तह। तो आचार्य शब्द का अर्थ तो आप सुनते रहते हो, जो शास्त्रों में से उस सिद्धांत को एक पक्षी की तरह से चुनने में जो समर्थ है, और समर्थ ही नहीं जिसने चुन लिया है, ऐसे उस आचार्य की प्रसन्नता को लेकर के। और आचार्य जब प्रसन्न होगा तो क्या करेगा? पिता पुत्र पर प्रसन्न होता है तो क्या करता? उसको अपना सब कुछ दे देता। गुरु जब शिष्य पर प्रसन्न होता है तो क्या दे देता है? अपना सब कुछ दे देता है। तो अपना उसका क्या है? अपना और कुछ नहीं, मठ मंदिर नहीं, वैभव नहीं, गुरु है ही वही जो ज्ञान से संपन्न है, वही उसकी संपत्ति है, वही उसका धन है। तो गुरु अपने हृदय का दान देता, अर्थात उसके हृदय में जो विद्यमान है उस हृदय को ही दे देता। भगवान ने भी अर्जुन को क्या माना? अपना शिष्य मान लिया। अर्जुन ने भी उन्हें गुरु मान लिया, तो भगवान ने भी क्या दिया? अपना हृदय दे दिया। और कह क्या दिया? जब हृदय दे दिया तो हृदय तो उनका, तो भगवान ने क्या कहा? कृष्ण क्या है, पार्थ क्या है? मे हृदयम, मेरा हृदय। और हृदय है तो हृदय को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक प्राणी प्रयास करता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को अपना हृदय स्वीकार कर लिया तो उसकी हर तरह से रक्षा की। और इसी प्रकार से यहां संकेत करते हैं आचार्य प्रसादतः। और जहां पर पारस्कर गृह सूत्र में एक मंत्र आता है, जो आचार्य के पास में जब उपनयन के करने के, उपनयन संस्कार करने के लिए जो प्राचीन पद्धति थी शिक्षा की, उसके अनुसार जब जाते थे तो आचार्य भी उस मंत्र का उच्चारण करता था, और जब विवाह का प्रसंग आता है तो वहां पर भी इस मंत्र का उच्चारण कराया जाता। वो मंत्र क्या है? मम व्रते ते हृदयम ददामी, मत चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम बाच मना मेक जुसस्व। आगे भी प्रजापति ने स्तु करके संकेत किया लेकिन उससे मतलब नहीं। तो यहां क्या कहा? कहा मम व्रते, मेरे व्रत में, ते हृदयम ददामि, मैं अपने व्रत में तेरे हृदय को क्या कर रहा हूं? का नीत करता हूं। यही यह नहीं कहा कि तू मेरे व्रत में अपने हृदय को लगा, वहां तो वह पूर्ण योग्य होकर के आया, विस्पष्ट रुचि वाला है। तब आचार्य क्या कहता है? ददामि, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। तो ददामि शब्द जहां क्रिया आएगी वहां अहम शब्द का प्रयोग होगा। मैं क्या कर रहा हूं? अपने व्रत में और तेरे हृदय को लगा रहा हूं, तेरे हृदय को दे रहा हूं। तो कहां दे रहे हो? कहा अपने व्रत में। कहा ये व्रत क्या? तो व्रत माने एक नियम, ये सही कह देते। और भी व्रत आप रखते हो, शिवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत, ये सब व्रत रखते हो, सोम मंगल कोई जो है अलग अलग व्रत रखते हैं, शनि आदि का, तो ये भी व्रत है। लेकिन व्रत शब्द का अर्थ क्या है? जहां व्रते शब्द कहा तो व्रतु धातु जो है परिपालन अर्थ में है। परिपालन अर्थ में जो व्रतु धातु से जब व्रत शब्द बनता है तो उसका अर्थ क्या होता? परिपालन। परिमाने होता है चारों तरफ से, परि परितः सर्वतः इत्यर्थ, चारों तरफ से पालन करना माने रक्षा करना। तो तेरे हृदय को हम अपने व्रत में लगा रहे हैं का मतलब यह है, कहता है कि आज से जब तूने शिष्यस्ते हम कह दिया तो मैं भी अब जो है हम गुरु अस्मि, मैं भी तेरा गुरु, और गुरु हूं तो कर्तव्य क्या है मेरा? शिष्य के कर्तव्य को अब नहीं कह रहा, शिष्य तो अपना कर्तव्य करके आ गया, शरण ले ली, समर्पण कर दिया, शिष्य हो गया। अब जो है गुरु का कर्तव्य क्या है? तो कहने लगे, कहा हृदयम ददामि, तेरे हृदय को मैं अपने व्रत में लगा रहा हूं, अर्थात अब तेरे हृदय की पूरी रक्षा करने का भार मेरे ऊपर, आज से मैं तेरे हृदय की रक्षा करूंगा। और हृदय क्या है? तो सुन चुके सत चित्त आनंद बैठा हुआ है जिसमें और जिसके द्वारा हृदय की क्रिया हो रही। लेकिन वहीं जहां सत चित्त आनंद बैठा हुआ, जहां क्रिया हो रही है, जहां अभिप्सा है, वहीं एक चीज और बैठी है। वो क्या है? तो कहने लगे वहीं पर जो है अविद्या नाम की वस्तु भी, जहां विद्या बैठी है वहीं पर अविद्या है। आश्रय दोनों का एक ही है, इसलिए किसी हिंदी के कवि ने लिखा, जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर बरसता है एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही। लेकिन आगे संकेत किया, ये सब तो हो रहा है, आगे कहा इतना होते हुए भी क्या होता है, पर यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। फिर कहा क्या ढंग होते हैं? तो इसका अर्थ तो समझते ही हो कि संकेत किया एक ही जगह पर क्या है, पौधा जब पृथ्वी से जन्म लेता है, एक पौधा उत्पन्न होता है, और पौधा जब उत्पन्न होता है तो उस पौधे पर क्या है, एक ही पृथ्वी है, कोई दूसरी पृथ्वी नहीं, एक ही पृथ्वी है और उस पौधे को वह पृथ्वी जो है खाद्य पदार्थ दे रही है और एक सा ही पदार्थ दे रही है। और चंद्रमा की ज्योत्सना आकर के वो कोई भेदभाव नहीं करती है, उस पौधे को प्रकाशित करती है। और कहने लगे इतना ही नहीं, वर्षा जो है वो भी भेदभाव नहीं करती, उस पौधे को जो है वर्षा भी बगैर भेद के जो है उसे सिंचित करती है। हवा आती है, हवा भी जो है क्या करती, वो भी भेद भाव नहीं करती है, वो भी उस पौधे को एक सी हवा देती है। लेकिन फिर भी उस पौधे में कहा दो रूप दिखलाई देते हैं। कहा कौन, तो आगे संकेत किया, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। क्या होता है, बढ़िया गुलाब का फूल देखते, पौधा उसका एक ही है, एक सा पानी मिला, एक सी हवा मिली, एक सी पृथ्वी पर, एक ही पौधे पर। अब वहीं पर क्या है, कांटा भी है और गुलाब का बढ़िया फूल भी उसी पौधे पर है। क्या कोई भेदभाव हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग तो ईश्वर को दोष लगा देते, क्या कहते हैं, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया है। तुलसीदास लिख भी दिया, काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा, ये संकेत। अब जो है कांटा क्या करता है तो बतला दिया, तो वृक्ष पर जाओ तो उंगलियों को फाड़ देगा, वस्त्र में उलझ गया तो वस्त्र को ही फाड़ देगा, और जो तितली जो है जाती उसके पास में तो उनके बिचारियों के पंख जो है बड़े कोमल और बड़े जो है नाजुक होते हैं, उनको ही फाड़ देता, और भौरा जाता है तो उसके ही शरीर को बेच देता, ये कर दिया। दूसरा संकेत किया, फूल लेकर तितलियों को गोद में, वही उसी पौधे पर क्या है, फूल भी है, लेकिन फूल क्या करता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। तितलियों को है, तितलियां जाती हैं तो पुष्प इतना कोमल है कि उनको अपने ऊपर बैठा लेता है और उनको भी सुख देता है, स्वयं भी सुखी होता है। और भौरा आता है तो अपने पराग का उसे पान करा देता है, अपने रस का उसे पान करा देता है। और कहने लगे इतना ही नहीं, और क्या करता है, तो आगे और संकेत किया, कहने लगे कि ये सब करते हुए निज सुगंधों और है निराले रंग से, क्या करता है, निज सुगंधों और निराले है रंग से क्या करता है, तो कहने लगे आगे कि खिला देता है जी की कली, जो भी उसे देखता है तो उसके मन को प्रसन्न कर देता। अब ये कहां हुआ, एक ही पौधे पर लेकिन दो रूप दिखलाई दिए, और आगे संकेत कर दिया,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में सातवें श्लोक की व्याख्या है। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्तः पुमान। छठे श्लोक में ये कहा, व्यक्ति जब शयन करने जाता है, सोने को जाता है, तो उस समय उसके सारे करण जो बाहर के पदार्थ ज्ञान के साधन थे, जगत भान का साधन जो थे, वे सब करण उपसंहृत हो जाते हैं। वेदांत के परिभाषा अनुसार अविद्या में सब साधन लीन हो जाते हैं। उस अवस्था में भी अपने से भिन्न पदार्थ का भले ही भान न होता हो, लेकिन अपना भान उस समय भी यथावत रहता है। संसार में यह कभी भी संभव नहीं है कि किसी को अपना कभी भी भान न हो, यह संभव ही नहीं है। इसीलिए आत्मा को साक्षी माना है, इसलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना है। सन मात्र सत्ता मात्र की स्फुरणा प्रतीति अनुभूति उस सुसुप्ति अवस्था में भी होती रहती है। उदाहरण दिया, जैसे चंद्रमा में या सूर्य में ग्रहण लगते हैं, उस ग्रहण के पूर्ण ग्रहण के अवस्था में सूर्य और चंद्रमा का स्पष्ट भान नहीं होता, दिखता नहीं। सभी लोग कहते हैं कि आज सूर्य नहीं दिखाई पड़ा, चंद्रमा ग्रहण ने इस तरह राहु ने उसको ढक लिया कि सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। राहु ने इस तरह ढक लिया है कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। विशेष रूप में भान न होने पर भी चंद्रमा और सूर्य का सामान्य भान यथावत होता रहता है। उस सामान्य भान को राहु केतु हटा नहीं सकते हैं। इसी तरह करणों का उपसंहार होने पर भी आत्मा का सामान्य भान अनुभूति प्रतीति स्वसंवेद्य रूप में उस समय भी होता रहता है। इस बात को प्रतिभिज्ञा से सिद्ध करते हैं। वेदांत के एक नया शब्द है प्रतिभिज्ञा। वह प्रतिभिज्ञा क्या है कि प्राग अस्वाप्सम इति, मैं पहले सोया था, गहरी निद्रा में सोया था और उस अवस्था में मैंने कुछ नहीं जाना। किसने कुछ नहीं जाना? मैंने कुछ नहीं जाना। तो सोकर उठने वाला व्यक्ति अपने अनुभव को इस तरह प्रतिविज्ञान करके सुनाता है कि मैं सुसुप्ति अवस्था में भी था, गहरे निद्रा में भी था और उस अवस्था में सारे करणों का उपसंहार हो जाने के कारण करणों के द्वारा होने वाले सारे ज्ञान और ज्ञान के विषय ये सब नहीं थे, उसको जानने वाला साक्षी मैं हूं, मैं था। या जागने के बाद इस प्रकार की हर व्यक्ति प्रतिविज्ञा का स्पष्ट अनुवाद करता है। प्रागव स्वाप समिति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायते, और ये प्रतिविज्ञान करने वाला जो व्यक्ति है वह साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है और वही आत्मा है, वह नित्य है। ये प्रतिविज्ञान से सिद्ध होता है। ये छठे श्लोक में प्रतिविज्ञान की प्रतिज्ञा कर दी। इस सातवें श्लोक के द्वारा उसी प्रतिविज्ञा का विस्तार पूर्वक व्याख्या कर रहे हैं। सुरेश्वराचार्य जी ने इस छठे सातवें श्लोक की व्याख्या से पहले प्रतिविज्ञा के बारे में एक विशेष बात कही है। प्रत्यविज्ञा बलाद आत्मा स्थायी निर्धार्यते यदि का नाम प्रत्यविज्ञेसा किंवा तस्याः प्रयोजनम्। आपने प्रतिविज्ञा के आधार पर आत्मा को स्थायी सिद्ध किया यानी नित्य सिद्ध किया और आत्मा को एक सिद्ध किया। आत्मा यदि दो होते तो सुषुप्ति का अनुभव करने वाला आत्मा भिन्न और जगने के बाद जागृत का अनुभव करने वाला आत्मा भिन्न होता तो सुषुप्ति का प्रतिविज्ञा जागृत में स्मरण पूर्वक न होता, क्योंकि ये बात पहले बताया जा चुका है कि स्मृति या प्रतिविज्ञा उसी को होता है जिसको पहले अनुभव किया हुआ होता है। अनुभव का ही पुनर्स्मृति होता है तो उस स्मृति और अनुभव के बीच में प्रतिविज्ञा काम कर रहा है। ये प्रतिविज्ञा किस जगह पर है, प्रतिविज्ञा की क्या भूमिका है, प्रतिविज्ञा ये क्या वस्तु है बोला, इसकी जिज्ञासा आपके मन में हो सकती है। स्मृति और अनुभव, अनुभव और स्मृति, क्योंकि पहले अनुभव होगा बाद में स्मृति होती है और अनुभव और स्मृति के बीच में प्रतिविज्ञा रहता है। उसी प्रतिविज्ञा के चलते बाद में स्मरण होता है। तो स्मृति और प्रतिविज्ञा में यह अंतर होता है कि प्रतिविज्ञान के लिए जो वस्तु पहले अनुभव किया था प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, ये ध्यान देना, इसीलिए कुछ लोग प्रमाण के अंतर्गत प्रतिविज्ञा को नहीं मानते हैं तो प्रतिविज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि प्रमाण है प्रत्यक्ष शब्द अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि। कुछ लोग एक प्रमाण मानते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसी को प्रमाण मानते हैं, उसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं। कुछ बात प्रवचन की में कोई ऐसी बात आ गई और आपने सुन ली और उसके बाद आप चले जाओ बाहर और सत्संग की चर्चा करते हुए आपने उस बात को कह दिया किसी के सामने, तब वो सुनने वाला व्यक्ति जिससे आप कह रहे हो वो सुनने वाला व्यक्ति कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तब आप उसके सामने बड़े जोर लगाकर कहोगे कि नहीं ये बात सही है, तुम किस आधार से कह रहे हो ये बात सही है, तो आप बड़े भरोसे से कहोगे कि हमने प्रेमपुरी आश्रम में स्वामी जी के मुख से हमने सुना है, खुद मैंने सुना है। इतना भरोसे से आप जो कह रहे हो इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं खुद उपस्थित था और मैंने अपने कानों से सुना है स्वामी जी ने कहा है। अब भाई स्वामी जी भी गलत भी तो कह सकते हैं स्वामी जी, तो आपको भरोसा है कि स्वामी जी गलत नहीं कह सकते, प्रमाण पूर्वक स्वामी जी इस बात को कहते हैं, इसलिए स्वामी जी के बारे में हमें शंका नहीं करना है। और उस बात को मैंने अपने कान से सुना, ये शब्द प्रत्यक्ष हुआ तभी जाकर आप दूसरों को कहोगे। और वो व्यक्ति भी जब स्वामी जी का नाम आप लोगे तब तो कहेगा कि स्वामी जी ने कहा है, अच्छा भाई तो फिर हम खुद स्वामी जी के पास जाकर इस बारे में स्पष्टीकरण लेंगे, तब वो आएगा फिर उसके बाद स्पष्टीकरण लेगा, फिर हम प्रमाण युक्ति अनुभूति इन सब के आधार पर उसको समझा देते हैं तो उसके शंका की निवृत्ति हो जाती है, वो विश्वस्त होकर चला जाता है कि हां ठीक कह रहे हैं आप। तो ये होता है, इसको कहते हैं प्रमाण। क्योंकि वेदांत में प्रमाण को और लक्षण को बड़ा महत्व दिया गया है। ये कहते हैं कि लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि, कोई भी वस्तु आप जो देख रहे हो वह जिस रूप में दिख रहा है उसी रूप में है कि नहीं, इसको ठीक प्रूफ करने के लिए आपके पास दो साधन की आवश्यकता पड़ती है। जब उन दो साधनों का प्रयोग करके उसके परीक्षण करते हो तो उन दो साधनों में वह खरा उतरता है, तब आपके मन में उस वस्तु के बारे में पक्का हो जाता है कि हाँ ये वस्तु यही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह प्रमाण और लक्षण से वो वस्तु घट रहा है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, वेदांत में वाक्य आता है, कोई व्यक्ति केवल प्रतिज्ञा कर देने से, मुख से कह देने से मात्र से वह पदार्थ सिद्ध नहीं होगा। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में मुख से एकदम कह दिया कि वस्तु ऐसा है, इतनी मात्र से वो वस्तु सिद्ध नहीं होगा। उसने जो बात कही है उस वस्तु के बारे में उसके अनुकूल प्रमाण और लक्षण मिलता है कि नहीं, ये समझदार व्यक्ति प्रमाण और लक्षण को प्रयोग करके तब उसके कथन को प्रमाणित करना चाहेगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, यहां आपने प्रतिविज्ञा ये इस युक्ति से, प्रतिविज्ञा के माध्यम से आत्मा के बारे में दो चीज सिद्ध करने की कोशिश की। एक चीज तो आत्मा नित्य है, इस बात को सिद्ध करने की आपने कोशिश की। दूसरी बात है कि आत्मा एक ही है, इस बात को भी सिद्ध करने की आपने कोशिश की। क्योंकि प्रागव स्वाप समिति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायते, जागृत में जागृत अनुभव करने वाला आत्मा, स्वप्न में स्वप्न अनुभव करने वाला व्यक्ति और सुसुप्ति में सुसुप्ति अनुभव करने वाला व्यक्ति, ये तीन अवस्था के तीन अनुभवकर्ता ये अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। कैसे सिद्ध हो रहा है ये कही है? तब कहते हैं कि नहीं, सुसुप्ति का जागृत में आकर वह स्मरण करते हुए ये कहता है, इसके बीच में प्रतिविज्ञा ये काम करती है कि उसी व्यक्ति को स्मृति होती है जिसने पहले अनुभव किया है, उसी व्यक्ति को होगा, दूसरे व्यक्ति को स्मृति नहीं होती है। इसलिए पहले देखने वाला व्यक्ति और स्मरण करने वाला व्यक्ति के बीच में ये प्रतिविज्ञा का अवस्था है, वह प्रतिविज्ञा ये सिद्ध करता है कि वही व्यक्ति यह है। हमने इस बारे में बहुत कहा है। देखो, प्रत्यक्ष में और स्मरण माने प्रतिविज्ञा में ये अंतर है। प्रत्यक्ष में जो वस्तु सामने होता है उस वस्तु को प्रमाण द्वारा, इंद्रियों द्वारा देखा जाता है और उसमें व्याप्ति दोष आदि न हो, लक्षण विकल आदि न हो, यत्वाभास आदि न हो और ठीक प्रमाण के द्वारा वह परीक्षण होने पर वो वस्तु के बारे में ज्ञान होता है, ये वस्तु ऐसा है, ये प्रत्यक्ष है। और प्रत्यभिज्ञा में ये होता है कि पहले देखा हुआ वस्तु और आज देखे हुए वस्तु, ये दोनों वस्तुओं के बीच में एक प्रत्यभिज्ञा विद्यमान रहता है। वह ये है कि बहुत लोगों ने प्रत्यभिज्ञा को स्मरण के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत ले लिया और अलग प्रत्यभिज्ञा नहीं मानी, लेकिन शंकराचार्य जी स्मृति में और प्रत्यभिज्ञा में अंतर मानते हैं। स्मृति वहां होती है वस्तु पहले दिखा हुआ हो और उस वस्तु का जो ज्ञान आपके पास हो और उस ज्ञान का आप कालांतर में और देशांतर में वो वस्तु न दिखने पर भी उसके ज्ञान का और उस वस्तुओं का आप स्मरण करते हैं, तो वहां स्मृति होता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कालांतर वस्तु, दिखा हुआ वस्तु, पहले कभी दिखा हुआ वस्तु, वही वस्तु कालांतर में माने आज जाकर फिर कहीं दूसरी जगह दिखाई पड़ता है, तब उस पहले दिखे हुए वस्तु में और आज दिखने वाले वस्तु के बीच में जो एक समन्वय करने का तत्व है और उसके द्वारा जो स्मृति जग गई है, ये वस्तु को तो मैंने 10 साल पहले वहां देखा था, ये केवल स्मृति नहीं है, क्योंकि वह वस्तु आज प्रत्यक्ष सामने है। 10 वर्ष पहले भी वह प्रत्यक्ष हुआ था, 10 वर्ष के बाद भी वह वस्तु प्रत्यक्ष हुआ था। अब इधर 10 वर्ष पहले का देश और काल अलग है, आज 10 वर्ष से बाद का देश और काल अलग है, दोनों देश और काल के बीच में एकता संभव नहीं है, क्योंकि वह भूतकाल में चला गया, आज वर्तमान काल में है, वह दूसरे जगह पर था, आज दूसरे जगह पर खड़े हैं। इसके बावजूद भी वो दोनों की एक रूपता बनाने वाला प्रतिविज्ञा होता है। स्मृति के लिए वर्तमान में वस्तु प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों में से बहुत हरिद्वार गए हो महाकुंभ मेले में, वहां जो कुछ भी देखा है, आज हरिद्वार नहीं है यहां, आज कुंभ मेला भी नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है, वही वातावरण यहां नहीं है, फिर भी आप उसका स्मरण आज कर सकते हैं। आप वह केवल स्मरण होगा, वह प्रतिविज्ञा नहीं कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं? वह प्रतिविज्ञा नहीं कहलाएगी, केवल स्मरण होगा उसका। स्मरण में और प्रतिविज्ञा में ये अंतर आप समझ लेना। स्मृति के लिए पहले दिखना जरूरी है, वस्तु का होना जरूरी है, उस वस्तु का दिखना जरूरी है, उस वस्तु का अनुभव होना जरूरी है, उस वस्तु के बारे में सही ज्ञान होना जरूरी है। तो देखा और सही ज्ञान हो गया, तब वह ज्ञान आपके में संस्कार के रूप में विद्यमान था, वो सब कुछ आपके अंतःकरण में संस्कार के रूप में रह गया। अब कालांतर में आप उसको स्मरण कर सकते हैं, स्मरण करने के लिए वह वस्तु की आवश्यकता नहीं, वह वातावरण की आवश्यकता नहीं, उस देश काल की आवश्यकता नहीं है। भिन्न देश में, भिन्न काल में, भिन्न परिस्थिति में, भिन्न अवस्था में आप उसको बैठकर स्मरण कर सकते हैं। लेकिन प्रतिविज्ञा में ऐसा नहीं चलेगा, आप कमरे के अंदर बैठकर स्मरण करके प्रतिविज्ञा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जो वस्तु पहले देखा था वही वस्तु आज भी दिखना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो सामने होते ही आपको यह निश्चय होगा कि इस वस्तु को 10 साल पहले मैंने देखा था। वस्तु सामने आने पर जब आपको ये पक्का हो कि इस वस्तु को 10 वर्ष पहले फलाने जगह फलाने परिस्थितियों में मैंने देखा था और वही वस्तु आज इस जगह पर इस परिस्थिति में मुझे दिख रहा है, वह पहले देखे हुए वस्तु का और आज दिखते हुए वस्तु के बीच में ये प्रतिविज्ञा के चलते एकता सिद्ध करता है। ये सिद्ध नहीं कि वो वस्तु अलग था ये वस्तु अलग था, ये होने नहीं देगा, ये प्रतिविज्ञा की उपस्थिति, ये विशेषता है। ये प्रतिविज्ञा विशेष करके स्वयं देवदत्त तत्त्वमसि इस वाक्य के शोधन में इस प्रतिविज्ञा का प्रयोग होता है। स्वयं देवदत्त, हाँ, स्वयं देवदत्त। कोई आपको कहे कि आप किसी नए जगत चले गए, मान लो कि आप 50 वर्ष या 25 वर्ष पहले कहीं गए थे और 25 वर्ष 30 वर्ष के बाद फिर पुनः आपको वहां जाना पड़ा और वहां गए तो वहां के व्यक्ति ने कहा कि आपको शहर घुमाते हैं, तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको शहर घुमाता हूं। तो आपने कहा कि नहीं, 25 वर्ष पहले मैं आया था, ये शहर घूम चुका हूं। तो वो कहेगा कि नहीं नहीं 25 वर्ष पहले का शहर दूसरा है, आज का शहर अलग है, क्योंकि इस बीच में इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। तो आपके मन में इच्छा हो गई कि अच्छा तो फिर घूमने चलते हैं, आपको ऐसे ऐसे जगह में ले जाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा ऐसा चीज। तो आपको उसके गाड़ी में बैठ गए या उसके पीछे लगकर चल पड़े। वो लेकर चला गया एक जगह,
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: तक सैनिक अभियान करके बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। उसके बाद वे अपनी प्रजा की नीति पूर्वक पालन करने में जुट गए। वे भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए प्रसिद्ध शिव स्थलों की यात्रा पर निकले। विभिन्न धामों में ईश्वर के विग्रहों के दर्शन करते हुए कलरचिंगर तिरुवारूर पहुंचे। विशाल मंदिर की परिक्रमा करने के बाद गर्भगृह में जाकर अधिष्ठाता देव वाल्मीकि नाथ के ध्यान में मग्न थे। इसी बीच उनकी पटरानी मंदिर की आंतरिक परिक्रमा में घूमते हुए उस मंडप पर पहुंची जहां भगवान को समर्पित करने के निमित्त विविध वर्णों के सुगंधित पुष्पों की माला गूंथी जा रही थी। सुरुचिपूर्ण ढंग से रंग बिरंगे फूलों की माला पिरोई जा रही थी। पटरानी का ध्यान मंडप के नीचे पड़े एक मनोहर पुष्प पर गया। रानी ने उसे उठाया और मंदिर की प्रथा से अनभिज्ञता के कारण फूल को सूंघ लिया। संयोग से यह दृश्य चिरुक्त नैयर नामक एक कट्टर भक्त ने देख लिया। उन्होंने यह कहकर कि भगवान को अर्पित करने वाले पुष्प को सूंघ कर रानी ने अपराध किया है, झट से उनकी नाक काट डाली। रानी की चीख पुकार सुनकर राजा तुरंत दौड़ पड़े। घटनास्थल पर पहुंचकर सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यह दंड पर्याप्त नहीं है। पूजा के योग्य पुष्प को सूंघ जाने के लिए नाक तक ले जाने में हाथ सहयोगी रहा है, अतः हाथ भी दंड का पात्र है। यूं कहकर राजा ने पटरानी का हाथ भी काट डाला। इस घटना का विश्लेषण आवश्यक है। राजा कलरचिंगर अनेक युद्धों में विजयी हुए। संभव है किसी युद्ध के बाद किसी अन्य धर्म को मानने वाले राज्य की कन्या या प्रदेश की कन्या से विवाह किया हो। यह इसलिए संभव है कि जब राजा गर्भगृह में परमेश्वर की उपासना में लीन था, उस समय रानी पति के संग न होकर प्रकार परिक्रमा में फूल गूंथने वाले मंडप में घूम रही थी। यह संभवतः राजनीतिक कारणों से किया गया विवाह था। यदि तमिल प्रदेश की कन्या होती या शैव धर्म को मानने वाली होती तो पूजा के फूल को सूंघने की भूल न करती। इस पर भी राजा द्वारा या शिव भक्त चिरतुणयार द्वारा दिया गया यह कठोर दंड जिस कट्टरता का परिचय देता है, वह कालांतर में स्वीकार नहीं हुई। प्राचीन काल में ऐसा शायद स्त्री की दुर्लभ सामाजिक स्थिति के कारण भी हुआ होगा, या फिर एक उदाहरण रूप ऐसा हुआ हो। निसंदेह आज के विचारशील नवीन सामाजिक धार्मिक परिवेश में किसी भी रूप में ऐसा कृत्य स्वीकार नहीं हो सकता। पौराणिक घटना के रूप में ही इसका एक स्थान है। शिव भक्तों की दो श्रेणियां हैं, प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाले और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले। कण्णप्पर जैसे भक्त शास्त्र और विधि निषेध को नहीं मानते थे। वे तो स्वयं प्रेम रूप हैं, प्रेमा भक्ति में अपने आप को ही भूल जाते हैं। शिव गोचरियार चिरतुणयार जैसे सिद्धांतवादी शास्त्र में विधि विधान को कट्टरता से मानते थे। आगम शास्त्रों में शिव पूजा के योग्य सामग्री को अपवित्र हाथों से स्पर्श करना महान पाप माना गया है, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि प्रभु ने तिन्नन कण्णप्पर द्वारा चढ़ाए गए मांस, अतिपत्तर द्वारा चढ़ाई गई मछली को भी स्वीकार किया है। कलरचिंगर द्वारा अपनी रानी को दिया गया दंड इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि भक्तों के समक्ष पति पत्नी अथवा पुत्र आदि का कोई संबंध नहीं। वे तो पूर्ण रूप से अपने प्रभु शिव के प्रति मन वचन और कर्म से समर्पित हैं। इसीलिए कलरचिंगर को नायनमार में एक उच्च स्थान मिला है। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तब इस अवस्था के परिपूर्ति तो आपके कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आपकी कृपा होगी तो विघ्न भी प्रवेश नहीं करेंगे। आपकी कृपा होगी तो आप सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए कार्य भी पूरा हो जाएगा। आपकी कृपा होगी तो आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए जो कार्य हम करते हैं उसमें

विधि भी पूरी हो जाएगी, त्रुटि भी नहीं रहेगी। इस भावों को हृदय में धारण करते हुए कार्य आरंभ में मंगलाचरण करने की हमारी वैदिक परंपरा है, और स्वयं शंकराचार्य जी मंगलाचरण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? खुद मंगल रूप होते हुए भी मंगलाचर रहे हैं, तो गीता में जो बताया है, यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते शिष्य शिक्षा यही। शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भी गुरु को मंगलाचरण करते हुए कर्म का आरंभ करे, अन्यथा फिर वह कर्म पूरा होने पर अहंकार की वृद्धि होगी, मैंने किया, क्योंकि मंगलाचरण कर्म करने से कर्म आरंभ किया है तो भगवान ने पूरा किया, ये देख लो। अब कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर दुखी होगा, रोएगा। मंगलाचरण करते हुए कर्म करोगे तो भाई ये भगवान की इच्छा है, उसकी मर्जी होती पूरा हो जाता, उसकी इच्छा नहीं है तो पूरा नहीं हुआ, रुक गया, और क्या। तो हम क्या, हम तो शूद्र है, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है, पूरा करना भगवान का काम है, तो ग्लानी नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा। सबसे पहले भगवान शिव ने, शंकराचार्य ने मंगलाचरण में शिव और शक्ति को, दोनों को संयुक्त स्मरण किया, संयुक्त, केवल शिव का स्मरण नहीं, शक्ति को भी। ये श्लोक शिव शक्ति संयुक्त मंगलाचरण का है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कभी सुना हो, नहीं सुना हो, महात्माओं ने बताया है। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, दूसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। नमः करते हुए कार्य आरंभ करते हैं तो उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं, यानी नमः शब्द का अर्थ ही होता है कि इस कार्य में मैं प्रमुख नहीं हूं, इस कार्य में आप ही प्रमुख हैं, इसकी सफलता और असफलता में आपका ही योगदान रहेगा, मेरी कोई भूमिका नहीं रहेगी। मैं ना ना मा ना मा मैं नहीं, ये जो कुछ है आप ही है। षटपदी में शंकराचार्य जी लिखते हैं, सामुद्रो ही तरंगा न क्वचन तारंगो समुद्र, देख लो। सत्य भी भेदापगमे नाथ, ये श्लोक है, हे नाथ ये बिल्कुल सत्य है, पारमार्थिक सत्य है कि आप और मेरे बीच में रंच मात्र भी भेद नहीं है। सत्य भी भेद अपगम, सारे भेदों का अपगम है। सत्य भी भेद अपगमे नाथ, फिर भी तवा अहम न मामकी नस्तम, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। क्या सुंदर बात है, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। भक्त लोग तो यही कहते हैं कि भगवान तो मेरे भगवान है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान तुम मेरे नहीं हो। क्या सुंदर बात है, ये न समझने वाले इस श्लोक का अर्थ नहीं कर पाते हैं। इसका भाव ये है, हे परमात्मा, मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपके होने न होने में मुझ पर निर्भर नहीं करता है। क्या समझे, इसका अर्थ ये है, मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है, आपकी कृपा है, आपका अस्तित्व है, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है, तब मैं हूं। लेकिन इसका उल्टा व्यतिरेक नहीं है, मेरी कृपा है तब आप हैं, ऐसा नहीं है। हा? जीव की कृपा होकर परमात्मा है कि परमात्मा की कृपा से जीव है, तब क्या हुआ? शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? वैष्णव लोग इसका गलत अर्थ कर देते हैं, तुम मेरे हो कहो,
भक्त ये कहे कि तुम मेरे हो, भगवान मेरे हैं। मेरे हैं का मतलब क्या? मेरे हैं का मतलब हो गया कि भगवान छोटा हो गया, मैं बड़ा हुआ। तुम मालिक हो गए ना। तुम किसी भी वस्तु को ये मेरा है कब कहते हो, बोलो है? बोलो ना, किसी भी वस्तु को ये मेरा है कब बोलते हो? जब उस पर आधिपत्य है, उस पर पूरा हक है, उस पर पूरा स्वामित्व है, तब ना तुम कहोगे कि ये मेरा है, है? तो उस वस्तु तुम पर आश्रित हुआ कि नहीं, तुम्हारे पर आधारित हुआ कि नहीं, है? क्या परमात्मा ऐसा है? तभी तो शंकराचार्य जी कहते हैं, हाँ, सत्यपि भेदापगमे नाथ। ये बात बिल्कुल सत्य है, वेदांत दृष्टि से विचार करें तब आपके और मेरे बीच में भेद नहीं। तत्व दृष्टि से विचार करें तो महाकाश और घटाकाश में कोई भिन्नता नहीं है। फिर भी घट उपाधि के चलते घटाकाश महाकाश के आश्रय में है, महाकाश पर आश्रित है घटाकाश, लेकिन घटाकाश महाकाश घटाकाश पर आश्रित नहीं है। क्या दुनिया में सब घटाकाश मिलकर एक महाकाश बना है, ऐसा है क्या? इसका मतलब घटाकाश नहीं रहेंगे तो महाकाश ही नहीं रहेगा क्या? हैं? घटाकाश क्या बोल रहा है महाकाश से, बोलो। तब जाकर ये स्तोत्र का अर्थ बुझो, समझोगे तुम लोग। घटाकाश महाकाश से क्या कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है घटाकाश, मान लो महाकाश से, हे महाकाश सत्य भी भेदापगमे। ये वास्तविक सत्य है कि तुम्हारे और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी ये घट उपाधि के चलते आप में और मेरे में भिन्नता हो गया है, नहीं हो गया, क्योंकि आप बड़े हो गए मैं छोटा हो गया, किसके चलते? उपाधि के चलते। इसीलिए मैं तुम्हारा हूं, यानी मेरे होने में तुम्हारा होना जरूरी है। मेरे होने में कौन बोल रहा है? घटाकाश किससे? महाकाश से। इसी तरह कौन बोल रहा है? जीव किससे? परमात्मा से। ये अंतकरण देह उपाधि न रहे तब तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं। अंतकरण सूक्ष्म स्थूल शरीर उपाधि आदि न रहे तो आप में और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी इन उपाधियों के चलते आप में और मेरे में भेद खड़ा हो गया। आप महान रह गए, मैं क्षुद्र हो गया। तवाहम न माम की नस्तुम, आप मेरे हैं, हाँ? तब अहम मैं तुम्हारा हूं, लेकिन आप मेरे नहीं हैं, हाँ? क्या मैं मर जाऊं तो आप रोओगे? कौन बोल रहा है? जीव किससे? भगवान से। क्या कह रहा है? क्या मैं मर जाऊंगा तो आप बैठे बैठे रोओगे? बोलो, जीव मरेगा तो परमात्मा बैठे बैठे रोएगा है? तुम लोग बोलो ना भाई, नहीं रोएगा? तुम क्यों रोते हो? अब परमात्मा मरेगा तो तुम रोओगे ही रोओगे, नहीं रोओगे है? अब परमात्मा नहीं मरेगा तो तुम मरोगे? ये किसने कह दिया तुमको परमात्मा नहीं मरेगा तो तुम मरोगे है? महाकाश का नाश होगा कि नहीं? तो महाकाश का नाश नहीं होगा तो क्या घटाकाश का नाश होगा? घट उपाधि का नाश होगा, घटाकाश का नाश नहीं। तुम नहीं समझते हो इसलिए तुम कह देते हो कि परमात्मा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। अरे भाई, परमात्मा न रहना संभव ही नहीं, इसलिए तुम्हारा न रहना भी संभव नहीं है, है? सत्य विभेद अपगमे नाथ तव अहम न माम की नस्तुम। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, सामुद्रोही तरंग
कोई भी व्यक्ति तरंगों को देखता है और पूछता है कि यह तरंग किसका है, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि समुद्र का तरंग है। जबकि तरंग और समुद्र में कोई रंच मात्र भी भिन्नता नहीं है। समुद्र और तरंग में रंच मात्र भी भिन्नता न होते हुए भी कहने के समय में कहने वाला क्या कहता है, ये तरंग किसका है, पूछने पर उत्तर क्या देता है, समुद्र का है। और कोई पूछे समुद्र किसका है, है? समुद्र किसका है, तो कोई उत्तर देता है कि तरंग का है। तरंग को तो समुद्र कहते हैं, समुद्रे भव समुद्र, लेकिन समुद्र को कोई तारंग कहेगा? तारंग माने तरंग से होने वाला है क्या समुद्र? नहीं है। सत्यपि भेदापगमेनाथ तवाहम न मामके नस्तम समुद्रो ही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र। बोलो, समुद्र तारंग नहीं है, तरंग समुद्र है, लेकिन समुद्र तारंग नहीं। समुद्र तरंग से पैदा नहीं हुआ, तरंग पर जी नहीं रहा है, तरंग पर आश्रित नहीं है। बात समझिए कि नहीं। इसी तरह जीव परमात्मा का है, लेकिन परमात्मा जीव का नहीं है। परमात्मा का है इसलिए जीव पर परमात्मा का अनुशासन चलेगा। परमात्मा जीव का नहीं है इसलिए क्या जीव परमात्मा पर अनुशासन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमात्मा जीवात्मा का नहीं है इसलिए जीवात्मा का अनुशासन नहीं चलेगा। ये भक्ति भाव है, द्वैताद्वैत भक्ति भाव। मूल रूप में अद्वैत होता हुआ भी औपाधिक भेद को स्वीकार करके शंकराचार्य जी ये भाव व्यक्त कर रहे हैं शिवानंद लहरी के माध्यम से। पहला श्लोक बड़ा सुंदर है, मंगलाचरण। कलाभ्याम चूड़ालम, कलाभ्याम चूड़ालम,

समृद्धि पुनर्भवाभ्याम आनंद पुरदनुभवाभ्याम नतिरियम इयम नति, ये मेरा नमस्कार है। इयम नति, मेरा यह नमस्कार है। किसके प्रति नमस्कार है? ये तुम्हारा कलाभ्याम चूड़ालम कृत शशि कलाभ्याम निज तप फलाभ्याम भक्तेषु। हा, कलाभ्याम चूड़ाला, ये भ्याम शब्द दो वचन, समझे कि नहीं? ये भ्याम जो कहा है ना, दो के लिए कहा जाता है। राम कृष्णाभ्याम नमः, राम और कृष्ण दोनों को एक ही बार नमस्कार करना होगा तो भ्याम लगाना पड़ेगा है। तो एक व्यक्ति ने सोचा, पूछा हमसे, महाराज ये राम तो राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, ये भ्याम क्या है? उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पूछा है उमा और महेश्वर, तो उमा तो उमा हो गई, महेश्वर महेश्वर हो गए, ये भ्याम क्या है महाराज? लक्ष्मी तो लक्ष्मी हो गई, नारायण नारायण हो गए, ये भ्याम क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? भ्याम क्या है? दोनों को जोड़कर है। इसलिए नारायण, यदि केवल नारायण को नमस्कार करनी हो, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नमः, ये लक्ष्माय नमः नहीं होता है, लक्ष्मी नमः। और दोनों के एक साथ बोलना हो तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, नारायण का आय भी गया, लक्ष्मी का अय भी गया, लक्ष्मी नमः नारायणाय नमः, दोनों जाकर एक आ गया। क्या आ गया? भ्याम। ये भ्याम दोनों को जोड़ने वाला है, भ्याम दोनों को अलग करने वाला नहीं, तोड़ने वाला नहीं है, भ्याम दोनों को जोड़ता है। भ्याम क्या है पता है तुमको? हंसने की बात कर दूं, शादी करते समय तुम लोगों ने तो शादी किया होगा ना, किया कि नहीं? शादी किया है ना? हमको तो पता नहीं भाई। वर और वधू है ना, लड़का और लड़की दोनों के स्वयंवर के समय में दोनों के कंधे में एक कपड़ा होता है कि नहीं, और बीच में जो गांठ होती है ना उसका नाम भ्याम। क्या है? बीच में एक गांठ लटकती है कि नहीं? वर और वधु के बीच में एक गांठ लटकती है कि नहीं? दो कपड़ों के छेड़ा बांध देते हैं ना, जनेऊ सुपारी पैसा डालकर, उस ग्रंथि का नाम भ्याम है। मतलब क्या हुआ? वो दोनों को जोड़ रहा है। शादी हो जाने के बाद वो गांठ फूका खोल दिया जाता है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई तब तक क्या हुआ? दोनों को उसने जोड़ रखा। ना लड़के के कंधे से कपड़ा हटेगा, ना लड़के के कंधे से हटेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके कंधे में भी वो ऐसा रहेगा, उसके में भी ऐसा रहेगा, वो सब कुछ उसको संभालेंगे, नहीं गिर ना जाए कहीं, क्योंकि वो भ्याम है ना, दोनों को जोड़ने वाला। उसके बाद तो गांठ कपड़े में लगाई थी, गांठ पड़ गया हृदय में। गांठ लगाया था कहां? कपड़े में। पड़ गया, पड़ने गया कहां? गांठ ग्रंथि कहां पड़ गए? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी ने लिखा है, जड़ और चैतन्य की ऐसी गांठ पड़ गई, हालांकि जड़ और चैतन्य की गांठ पड़ना संभव ही नहीं है, यद्यपि मृषा फिर भी छूटत कठिनाई। अब गांठ पड़ गया, अब क्या करोगे? मरते दम तक वो गांठ रहती है कि नहीं? मेरा पति मेरी पत्नी देव जी, वो गांठ मरने के बाद भी नहीं छूटता, मरते दम तो क्या, मरने के बाद भी नहीं छूटता है बाबा। फोटो लटका कर कहता है मेरी पत्नी, फोटो लटका कर कहता है मेरा पति,
गांठ फेर भी है, है? लेव जी, उसी का नाम क्या है? भ्याम। ये व्याकरण का शब्द है, है? इसलिए अर्धनारीश्वर भगवान शिव की स्तुति में नमः शिवाभ्याम, नमः शिवाभ्याम, नवयौवनाभ्याम, परस्पराश्लिष्ट बपुरधराभ्याम। ये इसका मतलब आधा पार्वती आधा शिव दोनों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। परस्परा बपुरधराभ्याम, आधा शरीर शिव जी के आधा पार्वती के। ये नागेंद्र कन्या दिशकेतनाभ्याम। तो यहां भ्याम शब्द से कलाभ्याम, दोनों की कलाओं में, कलाभ्याम चूड़ालंकृत। कला शब्द का दार्शनिक अर्थ बहुत है, वेद प्रतिपाद्य तत्व को नाम कला कहते हैं। वेद प्रतिपाद्य तत्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद द्वारा उपनिषद द्वारा जिस तत्व का प्रतिपादन किया है उसी को कला कहते हैं। इधर शिव है तो उधर ब्रह्म विद्या है, शिव में ब्रह्म है परमात्मा ब्रह्म, और शक्ति में ब्रह्म विद्या। ब्रह्म और ब्रह्म विद्या दोनों अलग नहीं हो सकते, इसलिए कालिदास जी ने कहा वागर्था विव संपृक्त वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाणी और अर्थ दोनों साथ साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि अर्थ कहीं रहे और वाणी कहीं रहे। इसी तरह ऐसा नहीं कि शिव कहीं रहे और शक्ति कहीं रहे, हाँ शिव शक्ति एक ही साथ रहते हैं। चूड़ालंकृत शशि कलाभ्याम, शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और उसकी कला माने एक अंश, सोलह में से एक अंश, एक अंश माने द्वितीय का अर्धचंद्र को शशिकला, पूर्ण चंद्र को शशि, अर्धचंद्र को शशि कला। जिनने शीर में चुड़ालम, चुड़ा अलंकृत शीर के, शीर में दोनों की जटा है, वो पार्वती की भी जटा है और शिवजी की भी जटा है, दोनों ने जटा में चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रमा को शशि क्यों कहते हैं, ये तो पुरानी मान्यता है, आप लोग भले कुछ भी कहो, एक मान्यता है कि चंद्रमा के बीच में खरगोश रहता है ना। आजकल तो कहते हैं एक बूढ़ी माई चरखा काटती है, ऐसा कहते हैं ना। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखो, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को, एक बूढ़ी माई वो चंद्रमा के बीच में बैठकर चरखा चला रही है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन पुरानी मान्यता है कि उसके बीच में शशि रहता है, शशि माने सासलो, ससलो खरगोश, खरगोश को नाम सस कहते, सस, और सस संस्कृत शब्द है, और उस सस से गुजरातियों ने ससलो कर दिया, तो मूल संस्कृत से ही लिया है गुजराती शब्द ससलो। तो चंद्रमा के बीच में वो सस रहता है, ससलो, तो सस रहने के कारण उसका नाम शशि हो गया। शशि का एक अंश कला, शशि कला जिन्होंने अपने सिर के मुकुट में धारण किया हुआ है, ऐसे दोनों को नमस्कार करता हूं। कलाभ्याम चूड़ालंकृत शशि कलाभ्याम निज तपह फलाभ्याम, दोनों एक दूसरे के तप के फल है। शिव पार्वती के तप के फल है, तो पार्वती शिव के तप के फल है। पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव ने घोर तपस्या की है, और शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की है,
और कठोर तपस्या करने के कारण पार्वती ने शिव को पाया और शिव ने पार्वती को पाया, दोनों क्या हो गए, तप फलाभ्याम। ये तपस्या का फल है, समझे नहीं। शंकराचार्य ने उस प्रसंग का स्मरण किया, आप लोगों को पुराण का प्रसंग मालूम ही है कि पहले भगवान शिव की पत्नी का नाम था सती, सती दक्ष पुत्री थी और शिव को बहुत प्यारी थी, और दक्ष प्रजापति के द्वारा उद्दंडता करने का परिणाम यह हुआ अंत में कि सती का शरीर नष्ट हो गया। और जब शिव को पता चला कि सती का शरीर खत्म हो गया तो आगे का प्रसंग आप लोगों को मालूम है कि शरीर को ही वो साथ में लेकर चलते रहे, कई दिन तक वो शरीर मृत शरीर को ही ढोते रहे, पुराण के प्रसंग है। अंत में देवताओं ने विचार किया कि ये तो बहुत विडंबना हो जाएगी, भगवान शिव तो सती के शरीर के अलावा और किसी का चिंतन ही नहीं कर रहे, उनका ध्यान तो केवल उसी में जा रहा है। तो सब ने विष्णु को कहा और विष्णु ने कहा कि ठीक है अब कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान को शिव को पता ही नहीं चला, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्रों से चक्र से सती के 52 टुकड़े कर दिए उस मृत शरीर के। 52 52 शक्तिपीठ हुए, जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां आज चैतन्यमय, क्योंकि सती का शरीर आपका और हमारा जैसा शरीर नहीं था। यदि आप हम का शरीर होता तो शिवजी लेकर चलते और तभी सुरक्षित रहता क्या, सड़ जाता, कीड़े पड़ते कि नहीं, कई वर्षों तक लेके घूमे कीड़े नहीं पड़े, क्यों, वो तो चिन्मय बपू था। चिन्मय बपू होने पर भी, क्योंकि उसके प्रति उनकी आसक्ति को हटाने के लिए भगवान विष्णु ने उनके टुकड़े कर दिए और जहां जहां जो जो अंग गिरा वो एक एक शक्तिपीठ हो गया। तो 52 शक्तिपीठ पुराण में प्रसिद्ध है। उसके बाद भगवान शिव ने संकल्प कर दी, अब मैं संसार में कुछ नहीं करूंगा, और जाके कैलाश में बैठ गए और तपस्या में लग गए और कठोर तपस्या की। और उनके तपस्या करने का परिणाम यह हुआ, इधर वृत्रासुर या एक असुर, उसने वरदान मांग ली थी कि मेरी मृत्यु हो तो शिवजी के पुत्र से हो, नहीं तो ना हो। अब वो ये जानता था कि शिवजी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब जीवन में दूसरी शादी नहीं करूंगा, जाके कैलाश में तपस्या में लग गए और उनका अब शादी नहीं होगी, सती मर गई और दूसरा शादी नहीं करेंगे, पुत्र नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं मारेगा, तो मेरी यदि मृत्यु हो तो शिव पुत्र से हो, नहीं तो ना हो। परिणाम ऐसा उद्दंड हो गया कि सारे देवी देवताओं को सताने लग गया, तो सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लग गए कि भगवान शिव ये तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा वरदान मांग लिया, अब आपको शादी करना पड़ेगा और एक बेटा पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर इसको मारेगा तब जाकर हमको शांति मिलेगी। भगवान शिव तो कठोर तपस्या में लगे थे, क्या करें, तो उन्होंने उसी संकल्प से तपस्या की। परिणाम क्या हुआ, वो सती पर्वत की पुत्री होकर पैदा हुई, मैना और पर्वत के संयोग से पर्वत की पुत्री होकर पैदा हुई। तो कहा कि मेरी पत्नी तो है ही नहीं, अब क्या करें, बोले नहीं नहीं, आप जब से सती के देह त्याग के पश्चात तपस्या करने लग गए तब से लेकर आज तक सती इधर पार्वती के रूप में पैदा हो चुकी है, आपके तपस्या का फल है। पुराण में यह वर्णन है, इसलिए यहां शंकराचार्य जी ने उस प्रसंगों को स्मरण किया, पार्वती जो है वह शिव तप का फल है।
और इधर पार्वती ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, शिव के अलावा किसी से नहीं। और बहुत समझाया गया कि तुम उसके ब्याह शादी करने का प्रतिज्ञा मत करो, उसके पास न रहने का घर है न खाने की। शिव हापुस आम खाते हैं कि नहीं है? बोलो, तुम्हारे हापुस आम की अपेक्षा तो धतूरा। खावे भांग धतूरे, रहे काज सभी काम पूरे। ना उनका भोजन ढंग का है, ना घर कहीं है उनका। श्मशान उनके संपत्ति क्या है, वैभव क्या है? श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप सृगपि निर्करोटि परिकर अमंगल्यम शीलम। और ऐसे से तुम शादी करने की बात करती हो पार्वती, ऐसा मूर्खता मत करो, इससे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। पार्वती ने नहीं माना। हाँ, पार्वती ने आगे जवाब दिया, भगवान का ये सोल स्वभाव सब कुछ अमंगलमय होता हुआ भी स्मर्तृणाम परमम मंगलमय। शिव भांग खाते हैं, इतने स्मरण कोई करे ना उसका मंगल हो जाएगा। शिव अशुद्ध भस्मी लगाते हैं, इतना स्मरण करे तो उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। स्मरण करने वालों को परम मंगल होता है, इसलिए मैं शिव को छोड़कर और से शादी नहीं करूंगी। तपस्या करने लगे। कहते हैं पार्वती पहले बहुत काली थी, मेरे जैसे बहुत काली थी। जंगल में तपस्या करने लग गई, शिव जी गए घूमते हुए, देखा शिवजी बहुत गोरे, कर्पूर गौरम है ना। शिवजी कैसे हैं? गोरे हैं, कर्पूर गौरम। और पार्वती काली। शिवजी ने कहा कि ऐसे काली से कोई शादी करता है? तू ये बहुत काली है, नहीं करूंगा तेरे से शादी। चल पड़े। गोरी होती तो फिर भी मैं सोचता, ऐसे काली से नहीं करूंगा। तो पार्वती ने जब ये सुना तो उनको बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा कि तपस्या करके भी मैं गोरी होकर भी शिव जी से शादी करूंगी। तो घोर का तपस्या करने लग गई, कठोर तपस्या करने लगी। और उस तपस्या, क्योंकि शिव गोरे थे, पहली बार पार्वती ने देखा गोरे हैं, तो उनकी गौर वर्ण का ही उन्होंने हृदय में ध्यान किया और तपस्या किया। करते करते पार्वती गोरी हो गई एकदम। तब उनकी मां ने उसका नाम रख दिया, अरे तू तो बड़ा काली थी, अब तो गोरी हो गई। तब उसका नाम पड़ गया गौरी। तो शिव ने देखा ये काली थी, अभी गोरी हुई कि नहीं जरा देखें तो सही। तो आए, देखा तो बहुत गोरी है। वाह, अब ठीक है, जोड़ी मिल गई। हाँ, तो भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। मतलब क्या? पार्वती के तप का फल शिव और शिव के तप का फल पार्वती। इस परस्पर शिव का पार्वती के परस्पर की तपस्या से परस्पर में उनकी प्राप्ति हुई है। इसलिए कहा निज तप फलाभ्याम। हम उसको नमस्कार करते हैं जो अपने तपस्या के फल के रूप में शिव को पार्वती की प्राप्ति, पार्वती को शिव की प्राप्ति हुई है, ऐसे दोनों को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे कहा भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम। और भक्त भी उनकी इसी तरह तपस्या करता है, भक्ति करता है, तो उनके हृदय में उस भक्ति के फल के रूप में वह शिव और पार्वती संयुक्त रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भक्तों के हृदय में भक्ति के फल के रूप में प्रकट होने के कारण उनको कहा भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम भवतु मे यम नति भवतु। यह अन्वय करना, भवतु माने मेरा यह नमस्कार होवे। शिवाभ्याम अस्तोक, अस्तोक स्तोक माने थोड़ा, अस्तोक माने पूरा, स्तोक माने थोड़ा, अस्तोक माने जो थोड़ा नहीं है वो पूरा।
त्रिभुवन शिवाभ्याम हृदि पुनर। दोनों त्रिभुवन शिवाभ्याम अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम तीनों लोक में सबके प्रति पूरे के पूरे किसी को छोड़े बिना पूर्ण रूप में तीनों लोक का कल्याण करने वाले दोनों होने के कारण क्या हुआ, अस्तोकम त्रिभुवन शिवाभ्याम। शिव माने कल्याण, दोनों कल्याणकारी हैं तीनों भवन में। हृदय पुनर्भवाभ्याम, ये दोनों भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। शिवा और पार्वती कहां प्रकट होते हैं, भक्तों के हृदय में प्रकट होने के कारण हृदय पुनर्भवाभ्याम आनंद स्फुरत अनुभवाभ्याम। हृदय में किस रूप में प्रकट होते हैं, जटाजूट के सहित नहीं, आनंद स्फुरत। पार्वती भी हृदय में, भक्तों के हृदय में यदि प्रकट होंगी तो वह आनंद के रूप में, और शिव भी यदि प्रकट होंगे तो आनंद के रूप में ही हृदय में प्रकट होंगे। ऐसे हृदय में अभिव्यक्त होने वाले उस परमात्मा यानी शिव और शक्ति को संयुक्त रूप में मैं ये नमस्कार करता हूं। ये नमस्कारात्मक शिव शक्ति की संयुक्त मंगलाचरण के द्वारा शंकराचार्य जी ने स्पंद की, और आगे दूसरे श्लोक में शिव भक्ति का फल बता रहे हैं। शिव भक्ति तो उसको फिर कल देखेंगे है। हाँ, तो एक बात आज हमारे जीवन भाई जी कह रहे थे और सुबह भी कुछ माताएं कह रही थी कि बरसात ऋतु शुरू हो गया, बरसात शुरू हो जाने के कारण सायंकाल 7:30 बजे तक प्रवचन रखने पर माताओं को विशेष करके घर पहुंचना होता है, ट्रांसपोर्टेशन की फिर तकलीफ होती है, बारिश होता है तो 6 बजे तक ही रखे, 5:30 से 6 बजे तक, सॉरी 5:30 से 7 बजे तक रखें तो आधा घंटा पहले कम करें, ये प्रस्ताव सुबह आया था। तो शायद इसी के आधार पर सभी को सुविधा हो, इसके लिए कल से ठीक 7 बजे पूरा करेंगे। आज हमने 7:30 भी नहीं किया, 7 भी नहीं छोड़ा, बीच में छोड़ा है ना, 7 से ऊपर, 7:30 से पहले बीच में जाकर छोड़ दिया है। तो कल से 7 बजे छोड़ेंगे और ये शिवानंद लहरी सुनते समय बड़ा आनंद आएगा, एक एक भाव ऐसे प्रकट होंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आओ, और ये 13 दिन का कार्यक्रम आज एक दिन कम हो गया तो 12 दिन तक तो अब और भी चलेगा। तो कल से फिर नियमित रूप में प्रेमप्रिय आश्रम ट्रस्ट ने श्लोक को भी फोटोकॉपी करके रखा है, आप लोग साथ साथ पढ़ते भी रहना और हम उसका अर्थ भी करते जाएंगे, और आपको मुझे लगता है स्तोत्र के अनुरूप आनंद आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि शिवानंद है इसलिए आनंद आएगा, उसका तरंग लहर चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। शिव महिमन पर विचार चल रहा है, नौवें श्लोक से विचार चलेगा। आठ तक विचार हम लोगों ने कर लिया था। एक ब्रह्मा जी के कार्यकाल में 14 मनु दिन में होते हैं, 14 रात को। जब ब्रह्मा जी के कार्यकाल में एक मनु बदलते हैं ना, दूसरे मनु आते हैं, तो बीच का गैप होता है, तो उसमें जो है ना ब्रह्मा जी को फिर बीच में करना पड़ता है। ऐसे हमारे गिरीश भाई ने प्रार्थना किया, हमने कहा ठीक है भाई, क्योंकि जब एक मनु जाएंगे दूसरे मनु महाराज आएंगे तब प्रारंभ होगा। ऐसे ही दो महीने कार्यकाल में हमारे श्रवणानंद जी महाराज के बाद में गैप रहा, फिर माधवानंद महाराज जी के बाद में, प्रणोचतन जी महाराज जी के बाद में। तो ये जो वर्ष चल रहा है स्वर्ण निर्वाण महोत्सव है ना, स्वर्ण निर्वाण महोत्सव। निर्वाण का अर्थ तो सब जानते ही हैं। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है निर्गतो वाणा अविद्यादिह दोषायस्मात् तत् निर्वाण। गीता में भगवान ने निर्वाण पद की बहुत महिमा गाई है। दुनिया में जितने भी पद हैं सारे पद आपदाओं से घिरे हैं। एक निर्वाण पद ही है जो निरापद है। वाण है अविद्या कामना वासना। अनादिकाल से जीव के हृदय में जो कामनाएं हैं, इदम मिश्यात, यही कामनाएं बाण के समान चुभी हुई हैं। जब तक हृदय में किसी के बाण चुभा हो तब तक शांति नहीं मिलती है, परेशान होता है। जैसे ही बाण निकल जाता है स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही अनादि काल से जीवात्माओं के हृदय में जो बाण है, वे बाण जब तत्व ज्ञान से निकल जाते हैं तो निर्वाण पद की उपलब्धि होती है। तो सभी जीव निर्वाण चाहते हैं। निर्वाण मतलब कि इस बाण से छुटकारा हो, अविद्या दुख कामना वासना से। वही हम लोग स्वनाम धन्य इस कल्पतरु के संस्थापक प्रेमपुरी जी महाराज के स्वर्ण निर्वाण महोत्सव को मना रहे हैं। बार बार अपने गिरीश भाई संबोधित भी करते रहते हैं, क्योंकि उपनिषद में आता है महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम् क्रियते तनु। इतने भी यज्ञ महायज्ञ महोत्सव है, इनके द्वारा उस आत्मा को समझने के अनुकूल अपना अंतःकरण बनाना चाहिए। इसलिए महोत्सव मनाना भी एक शास्त्रीय कृति के अंतर्गत आता है। तो आइए प्रकृति विषय पर पहले नौ इस श्लोक का उच्चारण कर लें। ध्रुवम कश्चि सर्वम सकलम परस्त्वम ध्रुवमिदम् परो ध्रव्याध्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषये।

यह सृष्टि का वर्णन चल रहा है कि सृष्टि का कारण क्या है और सृष्टि सत है कि असत है। यही प्रसंग स्वाध्याय में एक महीने से चल रहा है। तद अनन्यतम आरंभण शब्दादिभ्य जो ब्रह्म सूत्र का विषय है उसी को यहां पर पुष्पदंताचार्य जी ने एक श्लोकों में चर्चा किया है। ब्रह्म सूत्र में भी यह चर्चा आती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले ब्रह्म का जिज्ञासा किया, जिज्ञासा के बाद में तब कहा जन्माद्यस्य यतः। यतः मतलब जिससे जन्म स्थिति और संसार का प्रलय हो उसका नाम ब्रह्म है। यतः से यह नहीं बतलाया कि शून्य है या क्षणिक विज्ञान है या प्रधान है या ब्रह्म, बस यतः कह दिया जिसके द्वारा संसार का सृजन हो पालन हो संहार उसका नाम ब्रह्म। पर यतः शब्द से क्या लेना चाहिए, जैसे वहां विचार का विषय है ऐसे यहां पर भी है। इसके पहले नवें श्लोक के पहले पुष्पदंताचार्य ने कहा था कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। तो स्वात्मा राम शब्द से उस ब्रह्म का कथन कर दिया गया। जो स्वात्मा राम है अपने स्वरूप में रमण करता है वो उस व्यक्ति को ये विषय मृग तृष्णा नहीं भटकाती है, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने उपनिषद में इसी बात को बतलाया है अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह। ये जो विषय है ये अतिग्रह है, इसलिए अतिग्रह है क्योंकि जबरन मनुष्य को ये विषय अपने आप में घसीट करके भटकाते हैं। आप बहुत सावधान रहते हैं फिर भी सौंदर्य युक्त रूप आंखों को आकर्षित कर लेता है। डॉक्टर सावधान कर रहा कि खबरदार मीठा नहीं खाना, फिर भी ये मिष्ठान रूपी विषय जो अतिग्रह है जबरन जीव को खींच लेते हैं। तो विषय को अतिग्रह कहा, इंद्रियों ग्रह बदलाया। ये जो विषय है ये मृग तृष्णिका के समान है और जीवात्मा को संसार में भटकाते रहते हैं। परंतु जो स्वात्मा राम है जो अपने स्वरूप में आनंदित है उसको ये कभी भी भटका नहीं सकते हैं। संसार का जो आनंद है इसको बताया विषय मृग तृष्णा, और ब्रह्मानंद को स्वात्मा राम शब्द से संबोधित किया। जो विषयानंद ये क्षणिक है और क्षणिक होने से ये हमेशा परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होने से हम उसके अनुभव को बार बार करना चाहते हैं, इंद्रियों से उपलब्ध करना चाहते हैं पर उपलब्ध नहीं होता है। परंतु आत्मानंद स्थायी है। परंतु स्वात्मा राम तत्व क्या है इसका विवेचन इस नौवें श्लोक से यहां पर बतला रहे। ध्रुवम कश्चित सर्वम, इस संसार को कुछ लोग कहते हैं ध्रुव, ध्रुव मतलब कि सत कार्यवादी सांख्य। यहां पर ध्रुव पद से सांख्य दर्शन लेना, कश्चित मतलब सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि जगत सत है और कुछ मानते हैं अपरा मतलब कि अन्य, अन्य मतलब कि बौद्ध। ये कहते हैं अध्रुवम इदम सकलम, ये पूरा संसार अध्रुव मतलब कि असत है क्षणिक है। परो ध्रोव्या ध्रोव्य, और तीसरे जो नैयायिक है जिनको हम आरंभवादी कहते हैं, ये आरंभवादी नैयायिक कहते हैं जगत ध्रोव्या ध्रोव्य, कारण रूप से सत्य है कार्य रूप से असत्य है। इस प्रकार से आपस में तीनों विवाद करते हैं। जब सांख्य ने कहा कि संसार सत्य है तो बौद्ध ने आक्षेप किया कि यदि संसार सत्य है आप कह रहे कि बिल्कुल संसार घट पट मट सब सत्य है, तो फिर जो काम घड़ा से हो रहा है वही काम मिट्टी से होना चाहिए। उत्पत्ति के पहले भी मिट्टी में जब घड़ा मौजूद है तो कारीगर जो है दंड चाक चिवर के द्वारा घड़ा क्यों बनाता है,
वह मिट्टी को उठाए उससे ही जल का आनयन कर ले। इसलिए जगत सत नहीं हो सकता है, सत होता तो उसकी उपलब्धि होती और क्रियाकलाप नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से सांख्य का बौद्ध खंडन करते हैं और कहते हैं कि अध्रुवम क्षणिक विज्ञान सब कुछ है। क्षणिक विज्ञान में भी एक दोष है, यदि आप संसार को क्षणिक मान लेते हैं तो प्रतिभिज्ञा स्मृति नहीं बन सकती है। जो प्रतिभिज्ञा आप करते हैं कि मैं जो है 2 वर्ष पहले हरिद्वार कैलाश आश्रम में गया था, वहां जाकर हमने जो है पूजा पाठ किया, गंगा स्नान किया, ये मन में स्मृति हो रही है, तो 2 वर्ष पहले जो आपने दृश्य देखा, नजारा देखा, अनुभव किया, उसका मन में संस्कार पड़ता है। संस्कार के बाद 2008 में स्मृति होती है, याद आता है, किसी ने हरिद्वार की चर्चा की तो उस स्थान का याद आता है। तो यदि क्षणिक माने तो वह तो नष्ट हो गया, उसकी स्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके मत में क्षणिक आत्मा है, क्षणिक पदार्थ, सब कुछ क्षणिक है। क्षणिक मतलब क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है, तो फिर उसकी स्मृति नहीं हो सकती है। इसलिए क्षणिक है सब कुछ, अध्रुव है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर नैयायिकों से पूछा कि भाई आप भी बताओ संसार कैसा है, तो उन्होंने कहा कि द्रव्याद्रव्ये, इसका अन्वय करना, एतस्मिन् समस्ते जगति द्रव्याद्रव्ये व्यस्त विषय गदति परो गदति। ये जो समस्त संसार है, पूरा ब्रह्मांड, इसको कहते हैं द्रव्याद्रव्य। द्रव्याद्रव्य का अर्थ है परमाणु रूप से सत्य है, पृथ्वी जल तेज वायु इनके परमाणु, आकाश काल दिग आत्मा मन, इनको ये द्रव्य मानते हैं, सत मानते हैं, नित्य मानते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, आकाश काल दिग आत्मा मन, इनको कहते हैं बिल्कुल द्रव्य है, सुनिश्चित है, नित्य है। और इसके बाद जो भी संसार है वह असत है। असत मतलब कि कारण में पहले नहीं था, बाद में कारीगर ने इनको प्रकट किया। नैयायिक जो है कट्टर ईश्वरवादी, ईश्वर को सिद्ध करते हैं। नैयायिक कहते हैं कि क्षित्यंकुरम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, एक छोटा सा घड़ा बनाने के लिए कारीगर चाहिए, एक मकान दुकान बनाने के लिए कारीगर चाहिए, बिना कारीगर के जब कोई भी काम नहीं हो सकता है तो इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप कैसे हो जाएगा। इतनी बड़ी नदियां हैं, सागर हैं, जो सागर की इतनी गहराई है, हिमालय की ऊंचाई है, नदियों के जल का प्रवाह है, इसको भी कोई न कोई करने वाला होना चाहिए, ये अपने आप नहीं हो सकता है, न शून्य से हो सकता है, न क्षणिक विज्ञान से, न प्रधान से, तो पारिशेष्यात् जिसको बनाने वाला है वही ईश्वर है, क्योंकि अस्मदादि के द्वारा इनका निर्माण असंभव है। तो नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को बनाया और 2 विभाग किया, परमाणु आकाश काल दिग आत्मा मन तो ध्रुव है, नित्य है, और जो पदार्थ है असत्य है। इस प्रकार से न्याय दर्शन कहता है। ये आपस

तीन प्रमुख आचार्य हैं, इसके बाद चार्वाक दर्शन है, जैन दर्शन है और विदर्शन है, इनको भी समझ लेना ऊपर से। इतने बड़े ऋषि महर्षि हो करके भी बेचारे इस संसार के विषय विवाद करते हैं। कोई कहता है कि संसार असत्य है, कोई बोलता सत्य है, कोई बोलता सत्य असत्य उभय रूप है, कोई बोलता है स्वभाव से उत्पन्न हुआ, कोई बोलता है क्षणिक विज्ञान है, किसी ने कहा कि परमाणुओं से उत्पन्न हुआ, तो कोई बोलता है कि शून्य से ही उत्पन्न हुआ। आज भी विवाद चल रहा है, जो विवाद पुष्पदंताचार्य जी के जमाने में चल रहा था वो आज भी विवाद का विषय है। जेनेवा में 10,000 वैज्ञानिक खोज कर रहे कि ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ किससे उत्पन्न हुआ, शून्य से उत्पन्न हुआ या परमाणु इसके मूल में या कोई शक्ति है, ये विवाद पहले भी चल रहा था। तो पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है, इसीलिए त्वाम स्तुवन न जी रेमी, मैं तो बस आपकी महादेव का शंकर का परमात्मा का स्मरण कर रहा, स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि इन लोगों की जो मुखरता धृष्ट है, ये बड़े धृष्ट और मुखरवादी हैं, जो परमेश्वर का भी अपलाप करते खंडन करते हैं। कहते हैं जगत को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं, अपने आप हुआ, शून्य से हुआ, क्षणिक विज्ञान से हुआ, इसीलिए मुझे इस बातों को सुनने के बाद हंसी आ रही है। जिस प्रकार से आज विवाद का विषय है कि संसार को परमात्मा बनाया अपने आप हुआ, वही विवाद इनके सामने भी चल रहा था। सांख्य कहता है जैसे कि एक सोना है, उस सोने में पहले से मूर्ति मौजूद है, स्वर्णकार उस सोने को तपा करके सांची में ढाल देता है, मूर्ति निर्मित हो गई, तो कारण भी सत्य है, कार्य भी सत्य है। इसी विषय को न्यायिक कहता है कि जैसे मान लो कोई पाषाण है, पाषाण में मूर्ति पहले से मौजूद है, कारीगर अपद्रव्य को हटा देता है, अपद्रव्य को हटाते मूर्ति अव्यक्त हो जाती है। अब इसी चीज को सांख्य कहता है कि पहले सत था, न्यायी कहता है कि कारीगर ने उत्पन्न किया। देखो एक ही पाषाण खंड है, उस पाषाण खंड में से जो मूर्ति निर्मित हुई उसके विषय में जितने दार्शनिक उनका मतभेद है। सांख्य बोलेगा पहले से मूर्ति मौजूद थी, कारीगर अपद्रव्य को अलग किया। न्यायिक बोलेगा पहले मूर्ति असत थी, बाद में उत्पन्न हुआ। वेदांत बोलेगा कि उसी पाषाण का विवर्त है, पाषाण पर कल्पित है, आरोपित है। पाषाण नहीं होता तो मूर्ति निर्मित नहीं होती, कारीगर ने पाषाण पर अपने मस्तिष्क से एक आकार प्रकार बनाकर मूर्ति को बना दिया, तो पाषाण पर आरोपित है। तो संसार के विषय में सारे लोग विवाद किया करते हैं। इसके विषय में उपनिषद में आता है, आरामम तस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। उस परमात्मा के आराम मतलब संसार को सभी देख रहे हैं, पर उस परमात्मा को कोई भी नहीं देख रहा है। संसार का जो पदार्थ है इसके विषय में सारे दार्शनिक विवाद कर रहे हैं, ये जितने पदार्थ हैं सत्य हैं कि असत्य हैं, कि उभय हैं कि क्षणिक रूप में है, परंतु इसको जो बनाने वाला कारीगर है उसको कोई भी विचार नहीं करता है। इसलिए वेदांती ने कहा कि ये विवर्त है। जिस प्रकार से टेलीविजन में आप सारे चलचित्र को देखते हैं, बड़ी बड़ी नदियां दिखाई पड़ती हैं, सागर है, पहाड़ है, पर्वत है, परंतु स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, दिखाई सब कुछ पड़ रहा है, पर्दे पर सब कुछ दिखाई पड़ने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही चैतन्य पर इनाम रूपात्मक प्रपंच सब कुछ विवर्त है, विवर्त मतलब कि प्रातीतिक मात्र है, पर उस चैतन्य को छोड़कर कुछ भी नहीं है। पर अज्ञानी जीव केवल उन पदार्थों को पकड़ करके विवाद करता है। जो विवर्तवादी है, वेदांती है, ज्ञानी पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं, वह तो भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके

वाद से ये जो संसार है इसको कि गौतम महर्षि ने दुखमय कहा, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। ये जो है ना बौद्ध दर्शन के चार महावाक्य हैं, जैसे अपने आचार हैं तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसी प्रकार से वहां पर भी चार महावाक्य हैं। पहला है सर्वम शून्यम शून्यम, ये सारा पदार्थ शून्य रूप है, शून्य से उत्पन्न हुआ, शून्य में स्थिर है, शून्य में विलीन हो जाएगा। और दूसरा वाक्य है सर्वम दुखम दुखम, ये सारा संसार दुखमय है। तीसरा महावाक्य सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, ये सभी पदार्थों का अपना एक स्वभाव है, लक्षण है। चौथा है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये सब कुछ क्षणिक है। ये चार महावाक्य बौद्ध दर्शन में है। यहां कुछ दंताचार्य जी कहते हैं कि यही जो जगत अज्ञान काल में दुख में प्रतीत होता है, जब अधिष्ठान का साक्षात्कार होता है तो यही जगत ब्रह्ममय आनंदमय प्रतीत होता है। जैसे कि कोई बढ़ई है, बढ़ई जब लकड़ी को देखता है तो उस लकड़ी में उसको दिखाई पड़ती है कितने इससे कुर्सियां बनेंगी, मेज टेबल बनेंगे, दरवाजे खिड़कियां निकलेंगे। सामान्य आदमी तो लकड़ी देखता है, पर बढ़ई को वहां पर दिखाई पड़ता है इसमें कितने मतलब कि सामान तैयार हो सकते हैं। ऐसे ज्ञानी इस संसार को ब्रह्ममय देखता, चिन्मय देखता है, चैतन्य से अभिन्न समझता है, और चैतन्य से अभिन्न समझ करके उसी विराट विश्वात्मा का स्तुति करता है। तो पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि मैं इस विवाद में नहीं पड़ता हूं, बल्कि मैं तो विवर्तवाद का आश्रय लेकर उस ब्रह्म की परमात्मा का स्तुति कर रहा हूं। स्तुति क्यों कर रहे हैं तो पहले बतला चुके हैं।

0: न बुद्धिर व्यवशिता। स्तुति का कोई प्रयोजन नहीं, बस इतना है कि हमारी वाणी शुद्ध हो, पवित्र हो और अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण से बुद्धि सामने उस परमात्मा को निश्चय करके अपनी वाणी की पवित्रता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। एक राजा था, उस राजा ने घोषणा किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास मेरे कोई संतान नहीं है और जो 7 दिन के अंदर आएगा उसको मैं राजा बनाऊंगा। पर एक परीक्षा के लिए कुछ नियम निर्धारण किया, सभी लोग आए। सभी लोग आए तो हजारों की तादाद लग गई। राजा ने सोचा कि राजा तो एक को बनाना है, पर यहां उम्मीदवार हो गए 1000। अब हजारों में से कैसे चुनाव करें? सब बड़े योग्य थे, उनमें से छांट काट करना बड़ा कठिन काम था। छांट काट करने पर भी हजारों की उनकी संख्या हो रही थी। राजा ने नया तरकीब निकाला। उसने कहा, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं तो किसने किसी को राजा बनाऊंगा ही, पर हजारों उम्मीदवार हैं, मैं किसी को दुखी जो है नहीं करना चाहता। सारी हमारी प्रजा, सारे जो है राजा बनने लायक हैं, योग्य हैं, मैं सबको राजा बनाऊंगा।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 22. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரோபனிஷத் presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Khatakta hai ek sab ki aankh mein. Ek to kya hai? Sab ki aankh mein khatakta hai. Aur ek dusra hai sohata sur sheesh par. Aur dusre ki kya sthiti hai? देवताओं के सिर पर है सोहायमान होता. और आगे संकेत कर दिया कि इस प्रकार से होते हुए है कहा, मने उसके कुल में यह क्या विशेषता है जो इस प्रकार की स्थिति है. तो है बड़प्पन की कसर करके आगे संकेत कर दिया. तो ये सब जो है कहां हुआ, जैसे एक पौधे पर, वैसे ही संसार को क्या कहा गया? ऊर्ध्व मूल. तो क्या बतलाया गया? वृक्ष. एक ही वृक्ष है और एक ही वृक्ष में क्या है, देवता भी बैठे हुए हैं और असुर भी है. और दिति अदिति को लेकर के एक ही कश्यप से राक्षस भी हो गए और देवता भी हो. और इतना ही नहीं, एक ही प्राणी के हृदय में आसुरी संपदा भी बैठी हुई है और दैवी संपदा भी बैठी हुई, विद्या भी बैठी हुई है और अविद्या भी बैठी हुई. लेकिन अविद्या जब उसके हृदय में काम करती है तो उसे क्लेश में ले जाती है जैसे कांटा ले जाता है, और विद्या जब काम करती है तो फूल की तरह से उसे है प्रसन्न कर देती है और उसके जीवन में रस भर देती है. तो एक ही जगह, अब वही यहां संकेत कर रहे, जैसे ये एक जगह होता तो परमात्मा जो है अपनी सत्ता किसी के साथ में कोई भेदभाव रखने वाला नहीं. इसलिए ब्रह्मसूत्र में क्या लिखा, न घृण्य अदोषाश्च, घृणा रूपी दोष परमात्मा में नहीं. अब कोई कहेगा कि उसे तो सुखी बना दिया, हमको दुखी बना दिया, ये परमात्मा ने अन्याय किया. परमात्मा ने अन्याय नहीं किया. परमात्मा तो एक जैसा कार्य कर रहा है, जैसे वायु एक जैसी बह रही है, जल एक जैसा बरस रहा है और जो है चंद्रमा भी एक जैसी चांदनी दे रहा है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सबको एक जैसा देता है. लेकिन फिर भी अंतर हो जाता. तो किसको लेकर के कहा, विद्या अविद्या को लेकर के. अब कहा ये क्यों, अविद्या जिसे हम कहते हैं, अविद्या जहां होगी वहां कामना आएगी. अविद्या जहां होगी वहां कामना आएगी और विद्या जहां होगी वहां कामना की निवृत्ति होगी. कामना जहां आएगी वहां राग और द्वेष आएगा, और राग और द्वेष जहां आएगा वहां अयोग्य पदार्थों से, अयोग्य व्यक्तियों से संबंध होगा, और जहां अयोग्य पदार्थ अयोग्य व्यक्तियों से संबंध होगा तो वहीं पर दुख भी होगा. ये नियम है. लेकिन जब विद्या आती है तो वो क्या करती है, वो कामना को ही समाप्त कर देती. क्यों, फूल क्या करता है, फूल तो उसे तृप्त कर देता, रस भी पिलाता है, हैं, और बढ़िया सुंदर रंग भी दिखलाता है और कहने लगे सुगंध भी बढ़िया देता. हम वो लोग बोलते त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि, यदि सुगंधि को चाहते हो, सुख को चाहते हो तो उस तीन नेत्रों वालों को के जो है कहा, उसका ध्यान करो, उसका आयोजन करो. ये सब संकेत किया गया. और क्या करता है, उर्वारुको मेव है बंधनान मृत्योर्मुक्ति मां मृता, वो अमृत से नहीं किंतु तुम्हें मृत्यु से दूर भी कर देता. ये सब संकेत किया. तो वही यहां संकेत करते कि ये जो अविद्या और विद्या, ऐसा नहीं कि अलग रह रही होगी, अलग समय में रह रही होगी, ऐसा नहीं. विद्या और अविद्या प्राणी मात्र के हृदय को ही आश्रय करके विद्यमान है। जैसे उस पौधे को ही आश्रय बना करके कांटा भी विद्यमान है और फूल भी विद्यमान। लेकिन कांटे की विशेषता क्या है और फूल की विशेषता क्या है, ऐसे ही विद्या की विशेषता क्या है और अविद्या की विशेषता क्या है, ये संकेत करते। अब जब वह ऋषि इस चीज को देखता है, ये वैविध्य देखता है, सुख दुख को देखता है, इन द्वंद्वों को देखता है, सुख दुख कह दो या द्वंद ही कह दो, और जब द्वंद्वों को देखता है तो द्वंद्वों में फंसकर के बेचारा दुखी होता है, और दुखी होता है तो उस दुख से निवृत्त होना चाहता है, तो द्वंद्वों को वो देख करके और विचार करता है कि इन द्वंद्वों से पार ले जाने वाला, इन द्वंद्वों से हमें जो है सुख की तरफ ले जाने वाला वास्तव में कौन सा साधन हो सकता, वो कौन सा रस है। जैसे पुष्प के अंदर जो रस है सुख देने वाला, कांटे के अंदर जो रस है वो दुख देने वाला, वैसे ही यहां पर वो कौन सा रस है जो हमें सुख दे सकता है, ऐसे रस की उसके अंदर अभिप्सा होती है। इसलिए कहा विस्पष्टार्थ रुचि न, जो विस्पष्ट रुचि है तो अब जो है अन्य कुछ नहीं चाहने वाले, जो क्या चाहने वाले, उस रस को ही अभिलाषित करने वाले हैं, उस सुख को ही जो चाहने वाले हैं, अन्यत्र अब जिनकी स्थिति नहीं रह गई, अब द्वंद्वों में भी जिनकी प्रियता नहीं रह गई, किंतु वो चाहते हैं किसको, अब फूल में ही आज इच्छा नहीं उनकी, कांटे में भी इच्छा नहीं है, कांटे से घृणा नहीं, द्वेष नहीं और फूल में राग नहीं, किंतु वो चाहते हैं कि इस फूल और कांटे दोनों को जीवन देने वाला कौन है। यह है विस्पष्टार्थ रुचि, उसके आधार को, उसके मूल को, उसके सार को, उसके मन तत्व को जानने की जो इच्छा वाले हैं उसको कहा विस्पष्टार्थ रुचि ना, जो विस्पष्ट रुचि वाले हैं, ऐसे उन विस्पष्ट रुचि वालों के लिए। एक कथा सुना दें आप और समझ में आ जाएगा ये ज्ञान अज्ञान की स्थिति। सारा संसार क्या है हम लोग सुनते तो रहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति, और यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, ये हम लोग कहते और भगवान ने कहा, उसका अनुवाद हम लोग भी करते। अब इसको कैसे समझा जाए तो इसके लिए कथा सुना दे, कथा से जल्दी समझ में आ जाए। एक वृद्धावती नाम की नगरी थी, उस नगरी का जो राजा था उस राजा का नाम था अज्ञान चंद्र, और उसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था अबुध सिंह। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरि राम। ये सब कल्पनाएं ही हैं, लेकिन कल्पना क्या करती है, माना देवदत्त की मजदूरी कर रुपए है, ये कल्पना ही तो की। मैथमेटिक्स गणित के अंतर्गत आप कल्पना करते हो, माना कर रुपए या सौ रुपए, लेकिन वो मान्यता आपको कहां ले जाती, जब उसकी नियमबद्धता के अनुसार चलते हो, उसके फार्मूले के अनुसार चलते हो, उसके सूत्र के अनुसार चलते हो, तो वो कहां ले जाती है, तो आपको जो उसकी सही मजदूरी है वो निकल करके सामने आ जाती, और वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में यदि प्रारंभ में थोड़ी सी त्रुटि आ जाए, भूल आ जाए, तो क्या होता है, वो भूल है चक्रवृद्धि ब्याज का ही मतलब दो दूनी चार और चार दून चार चौकू सोलह, तो मैंने वो कई गुना बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से थोड़ी सी भूल हमारे जीवन में आ गई तो वो भूल क्या बन जाती, महान पुलंदा बन जाता। और यदि जो है हम मान्यता ही करके चल पड़े लेकिन मार्ग सही है, भूल नहीं हो रही है, तो क्या होता, तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते, लक्ष्य पर पहुंच जाते। ठीक इसी प्रकार से ये संसार है, यदि विद्या के नियम के अनुसार हम चलते हैं तो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। वो सार क्या है, और वहीं कहीं अविद्या आ गई, प्रकृति आ गई, माया आ गई, भ्रम आ गया, भ्रांति आ गई, भूल आ गई, तो वो क्या करेगी, तो कह दिया है 84 लाख की चर्चा करते और पुनरप जननम पुनरप करते, तो ये चक्कर से छूटने वाला, तब ये चक्रवृद्धि व्याज की तरह से बढ़ता ही रहता। इसलिए संकेत किया कि वो जो हरिराम पंडित था और उस पंडित का एक सेवक और था, बढ़िया खा पी करके खूब मोटा ताजा हो गया था, क्योंकि भाई पंडित लोग जो प्रवृत्याही करते हैं बढ़िया माल आता है, तो नौकर भी जो होते हैं वो भी बढ़िया खा पी करके स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसका नाम ही था कुशल चंद। ऐसे व्यक्ति की जो शरण ले लेता है, उसके आश्रय में रहता है, वो भी कुशलता को प्राप्त हो जाता है, ये समझ लेना। तो उसका नाम था कुशल चंद। अब ये तो था वृद्धावती नगरी अज्ञान चंद का नाम का राजा, प्रधानमंत्री अबुध सिंह हरिराम जो है उसी नगरी में एक सामान्य पंडित रहता था और उस पंडित का सेवक था कुशल चंद। लेकिन उस नगरी का नियम बुला विलक्षण था। क्या नियम था, जो भगवान गीता में कहते या निशा सर्वभूतान, उसके यहां नियम था कि दिन को रात्रि कहते थे और रात्रि को दिन कहते, ये उसके यहां नियम था। अब जब ये नियम था तो उसकी नगरी में एक बार एक विदेशी पर्यटक आया भ्रमण करने के लिए। आया जब विदेशी पर्यटक तो उसने बाजार में एक दीवार के पास में जाकर के एक खड्डा खोदा और वहां पर दाल बाटी, उसने अग्नि प्रज्वलित करके दाल बाटी बनाई। खाने के लिए ही बेचारा बैठा हुआ था, तब तक उस नगरी के जो कर्मचारी थे वो आ गए और उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो है ऐड़ा लगाया है, तुम्हारा चोरी करने का इरादा है। दीवाल काटते हैं ना, पहले चोर क्या करते थे, दीवाल काट देते, तुमने ऐड़ा लगाने की कोशिश की है और जो है तुम चोरी करने का इरादा था। उसने कहा भले आदमी, चोर कहीं दिन में ऐड़ा लगाता। उसने कहा ये सब कुछ नहीं, तुमको पता नहीं, हमारे यहां दिन को रात्रि और रात्रि को दिन कहा जाता, इसलिए पकड़ के ले गया। राजा ज्ञानचंद के पास ले गया, जाके वहां खड़ा कर दिया और उसके सारे आरोप को, अपराध को उसने कह सुनाया। जब अज्ञान चंद ने सुना तो अज्ञान चंद ने जो है ऑर्डर दे दिया, कहा इसको फांसी लगा दो। जब कहा फांसी लगा दो, सूली पर चढ़ा दो इसको, तो उसका प्रधानमंत्री जो था अबुध सिंह उसकी तरफ देखा उसने। अब प्रधानमंत्री ने कहा महाराज एक बात है। कहा क्या, अपनी नगरी में सौभाग्य से एक नई सूली तैयार हुई है और जो नई सूली तैयार हुई है वो बड़े पुण्यों से हुई है और शुभ मुहूर्त में बनी है, इसलिए ऐसा करो पहले उस सूली का प्रयोग भी हो जाएगा तो पहले उस सूली पर किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाए, उसके बाद इसे देखा जाएगा। राजा ने मुंह हिला दिया, ठीक प्रधानमंत्री हमारा बड़ा निपुण है। कहा ठीक है, कहा तुमने बहुत अच्छी बात कही। तो राजा ने तुरंत जो है कर्मचारियों से कहा कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। अब वो लोग गए तो वो कुशल चंद ही मोटा ताजा था, कहा उसी को पकड़ के ले आए। अब जब उसको पकड़ करके लाए और राजा ने जैसे ही देखा मुंह हिलाया, कहा बहुत अच्छा, हम जैसा चाहते वैसा ही अच्छा प्रयोग हो जाएगा, अच्छा आदमी लाए। और जब कुशल चंद ने ये देखा और कहा किसको सूली पर चढ़ाया जाए, कुशल चंद ने कहा महाराज सूली पर चढ़ने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन यह सूली देख करके हमारे हृदय में ऐसा आ रहा है कि यह तो बड़ी रहस्यपूर्ण सूली, इसकी तो बड़ी विलक्षण महिमा है, पता नहीं किस मुहूर्त में बनी। और महाराज यदि हमारी बात को प्रमाणित न माने तो हमारे पंडित जी बड़े जानकार हैं, आप उनको बुला करके उनसे पूछ लीजिए। राजा ने कहा ठीक कह रहा, जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। गए हरिराम के पास, जैसे ही सिपाही गए तो सिपाहियों ने साहब बतला दिया, सब बतला दिया, तो वो समझ गया कि राजा जो है मुंह वैचित्ते मोहाव्रत है, और सुनते ही रहते हिदाते मोह कलिलम, है मोह तो कलिल के समान है, दलदल के समान। तो राजा को समझता था कि ये मोह से युक्त है, मूड राजा है, इसलिए वो चल पड़ा वहां से और चल करके थोड़ी दूर ही आया। और दूर से ही हरिराम ने जो है लंबी दंडवत करना शुरू कर दिया, सूली को देख करके सूली को दंडवत करना शुरू कर दिया। और सूली को जब दंडवत करना शुरू किया तो जब तक वहां पहुंचा तो सैकड़ों दंडवत उसने कर डाले, और सूली के पास जाकर के तीन प्रदक्षिणाएं लगाई और बड़े ही प्रसन्न चित्त से कहने लगा आज मेरा अहो भाग्य। राजा ने उसकी इस क्रिया को देखा, राजा पूछने लगा पंडित जी ये सूली है और इस सूली पर आपको चढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप सूली पर चढ़ने के लिए इतने प्रसन्न चित्त इतने उत्सुक क्यों हैं? उसने राजा से ऐसे कहा मानो उसने उनकी राजा की बात सुनी ही न हो। और पंडित जी ने कहा महाराज क्या बतलाऊं, आज मेरा अहो भाग्य है, ये सूली नहीं है, ये तो साक्षात देव है। और ये साक्षात देव है, कौन सा देव है? अरे प्राचीन काल में यही भगवान शिव की नगरी में थी, भगवान शिव के पास थी, इसलिए तो उनका नाम सूलपाणी पड़ा, प्रमाण भी दे दिया उनका नाम ही है सूलपाणी। और वही सूली आपके पता नहीं कौन से भाग्योदय हुए हैं जो आपके राज्य में वो आ गई। और इस सूली की विशेषता महाराज है कि इस सूली पर जो चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा, उसे स्वर्ग का सुख मिलेगा और शाश्वत सुख की प्राप्ति उसे होगी। इसलिए महाराज जल्दी करो, शीघ्र करो और अपने व्रत्यों को जो है आदेश दो और मुझे जल्दी सूली पर चढ़ा दे। जैसे ही पंडित जी ने हरिराम ने ये कहा तो राजा ने कहा अच्छा, उसकी महिमा को सुना, और जब महिमा को सुना तो कहने लगा इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, इस सूली पर तो पहले मैं चढ़ूंगा, क्योंकि मैं इस नगरी का राजा हूं, इसलिए मेरा अधिकार है, इसलिए पहले मैं चढ़ूंगा। उसने कहा नहीं महाराज, आपकी सूली है, आप तो कभी भी इस पर सवार हो सकते हो, ये अवसर मुझे ब्राह्मण को दे दो, आप तो प्रतिपालक हो, गो ब्राह्मण हितायत करके उसने जो है संकेत किया। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं इतना बेवकूफ थोड़े ही हूं, ध्यान दे लो, इतना मैं बेवकूफ नहीं हूं जो ऐसा सुंदर अवसर अपने हाथ से चला जाने दूं, पहले मैं चढ़ूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही आप करो, आपका प्रधानमंत्री भी बड़ा निपुण है। हां हां, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे बाद हमारे प्रधानमंत्री को चढ़ाना, ऐसा मंत्री मिलने वाला नहीं, इसको हम अपने साथ रखें। पंडित जी ने जो है बढ़िया ढंग से षोडशोपचार से उस सूली की जो है पूजा की, राजा और मंत्री को जो है रक्त वस्त्र पहनाए, पुष्पों की माला गले में डाली और जो है तो ये तो है क्या, एक कल्पना, एक कहानी। यह जीव ही जो है राजा है और संसार ही ये वृद्धावती नगरी है। इसमें सारे वृद्ध ही कार्य तो हो रहे हैं, ये संसार वृद्धावती नगरी है, जीव ही इसका राजा है और बुद्धि ही अबुध सिंह नाम का इसका प्रधानमंत्री। और ये पर्यटक जो है वो कौन है, ये आत्मा ही पर्यटक है। जो आत्मा है वही पर्यटक है। हम आत्मा को कलंकित करते, उसी पर आरोप लगाते, उसका हनन करते, और कैसे तो आप सुनते रहते हैं। आचार्य शंकर ने भी लिख दिया, क्या लिखा, सही आत्महा स्वयं विनहंत असत ग्रहात, है ना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या, इसका निर्णय करने में समर्थ नहीं। और जहां ज्ञान होता वहां कामना होती है, कामना ही हमें कहां ले जाती है, सूलों में ले जाती, अयोग्य संबंध कराती। और लेकिन हरे राम, जो हरि में रमण करने वाला, जिसने परमात्मा को ही अपना आश्रय तत्व मान लिया है और उसी में जो रत है, उसी के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, उसी के लिए जो है कर्तव्य कर रहा है, तो कहने लगे वही है हरे राम। उसी में ऐसी विद्या आती है, विवेक आता है, और उस विवेक के द्वारा वो जो क्या है, उस सूली से, संसार के तापों से रहित हो जाता है, और उसका सेवक जो उसके अनुकूल चलने वाला है, तो माने जो विवेकी है और विवेक पूर्वक विद्या का ही आश्रय लेने वाला है, वो है हरिराम पंडित। और वो हरिराम पंडित का भी अनुसरण करने वाला जो है, वो भी कुशल से रहता, तो कुशल संत भी बच जाता है, दोनों बच जाते हैं। तो इस प्रकार से यह संसार की स्थिति, इसलिए यहां संकेत किया कि जो हरिराम की तरह से उस आश्रय तत्व को ही जानने की इच्छा रखने वाला, यही है विस्पष्टार्थ रुचि नाम, विस्पष्ट रुचि वाला। तो विस्पष्ट रुचि क्या है, विशेष रूप से जो स्पष्ट रुचि है वो क्या है, तो आप सुन चुके, मैं हूं, मैं बना रहा हूं, मुझे कोई मिटाए नहीं, और मैं जानता हूं, जानता रहूं, है मुझे कोई बेवकूफ नहीं बनाए, और मैं सुखी हूं, सुखी बना रहा हूं, मेरे सुख को कोई छीने नहीं। ये कहां से आ रहा, इसका आश्रय तत्व तो क्या, तो वही सच्चिदानंद है, वही हृदय में विद्यमान। ऐसे उसको जानने के लिए, ऐसे उसका अनुभव करने के लिए जो क्या है, माने जिज्ञासु है, या उसी के लिए जो तत्पर है, है? तत्पर तो हम लोग जो है सुनते रहते हैं, क्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, तो तत्परा, तो तत्शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा ही किया गया, माने सर्वज्ञ तो विशिष्ट आदि कह देते हो वेदांत की भाषा में, माने परमात्मा। और उसके पराये रहे जो तत्परा, ये नहीं कहा खाम परा, भोग परा, धन परा नहीं कहा, वहां क्या कहा, तत्परा। और संयतेन्द्रिया, जो संयम से चलने वाला है, संयत रखने वाला था, राग द्वेष से रहित होकर के, तो इस प्रकार से जो विवेकी साधक है और जो जिसने इतनी साधना यहां तक कर ली है, उसके लिए यहां कह रहे हैं कि विस्पष्टार्थ रुचि ना, जो ऐसे विस्पष्ट रुचि वाला है, ऐसे उस विस्पष्ट रुचि वाले के लिए आचार प्रसादत हो, आचार की प्रसन्नता से, जो आचार्य अपने हृदय को ही देने में लगा था, उसके जो समर्पण हो गया, उसके हृदय की जो रक्षा करने में तत्पर है, वह है आचार्य। ऐसे उस आचार की प्रसन्नता से, ऐसे उनकी कृपा से, और मैं क्या करने जा रहा हूं, तो कहने लगे तैतिर्य उपनिषद का जो सार है, वो सार की व्याख्या करने जा रहा हूं। ये संकेत किया, अब आगे चर्चा कल कर।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

सात्वजिया मम तनूस्त्वय्य भूः दियज्ञसामये यथा यथन्नौ व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापातिरमग्रस्तानुतपस्तपस्पतिः। गुरुविष्णो विक्रामस्फुरुक्षया आयनस्कृधि घृतं।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

जगन् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्ति निराकरणम् मे अस्तु सदात्मनिर्देयोपनिषत्सु धर्मात्तेनैव सन्दुतेन।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम

0: दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में सातवें श्लोक की व्याख्या है। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्तः पुमान। छठे श्लोक में ये कहा, व्यक्ति जब शयन करने जाता है, सोने को जाता है, तो उस समय उसके सारे करण, जो बाहर के पदार्थ ज्ञान के साधन थे, जगत भान का साधन जो थे, वे सब करण उपसंहृत हो जाते हैं। वेदांत के परिभाषा अनुसार अविद्या में सब साधन लीन हो जाते हैं। उस अवस्था में भी अपने से भिन्न पदार्थ का भले ही भान न होता हो, लेकिन अपना भान उस समय भी यथावत रहता है। संसार में यह कभी भी संभव नहीं है कि किसी को अपना कभी भी भान न हो, यह संभव ही नहीं है। इसीलिए आत्मा को साक्षी माना है, इसलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना है। सन्मात्र सत्ता मात्र की स्फुरणा प्रतीति अनुभूति उस सुसुप्ति अवस्था में भी होती रहती है। उदाहरण दिया, जैसे चंद्रमा में या सूर्य में ग्रहण लगते हैं, उस ग्रहण के पूर्ण ग्रहण के अवस्था में सूर्य और चंद्रमा का स्पष्ट भान नहीं होता, दिखता नहीं। सभी लोग कहते हैं कि आज सूर्य नहीं दिखाई पड़ा, चंद्रमा ग्रहण ने इस तरह राहु ने उसको ढक लिया कि सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, राहु ने इस तरह ढक लिया है कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। विशेष रूप में भान न होने पर भी चंद्रमा और सूर्य का सामान्य भान यथावत होता रहता है। उस सामान्य भान को राहु केतु हटा नहीं सकते। इसी तरह करणों का उपसंहार होने पर भी आत्मा का सामान्य भान अनुभूति प्रतीति स्वसंवेद्य रूप में उस समय भी होता रहता है। इस बात को प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध करते हैं। वेदांत के एक नया शब्द है प्रत्यभिज्ञा। वह प्रत्यभिज्ञा क्या है कि प्राग अस्वाप्सम इति, मैं पहले सोया था, गहरी निद्रा में सोया था और उस अवस्था में मैंने कुछ नहीं जाना। किसने कुछ नहीं जाना? मैंने कुछ नहीं जाना। तो सोकर उठने वाला व्यक्ति अपने अनुभव को इस तरह प्रतिविज्ञान करके सुनाता है कि मैं सुसुप्ति अवस्था में भी था, गहरे निद्रा में भी था और उस अवस्था में सारे करणों का उपसंहार हो जाने के कारण करणों के द्वारा होने वाले सारे ज्ञान और ज्ञान के विषय ये सब नहीं थे, उसको जानने वाला साक्षी मैं हूं, मैं था। या जागने के बाद इस प्रकार की हर व्यक्ति प्रतिविज्ञा का स्पष्ट अनुवाद करता है। प्रागव स्वाप समिति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञाते और ये प्रतिविज्ञान करने वाला जो व्यक्ति है वह साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है और वही आत्मा है, वह नित्य है। ये प्रतिविज्ञान से सिद्ध होता है। ये छठे श्लोक में प्रतिविज्ञान की प्रतिज्ञा कर दी। इस सातवें श्लोक के द्वारा उसी प्रतिविज्ञा का विस्तार पूर्वक व्याख्या कर रहे हैं। सुरेश्वराचार्य जी ने इस छठे सातवें श्लोक की व्याख्या से पहले प्रतिविज्ञा के बारे में एक विशेष बात कही है। प्रत्यविज्ञा बलादात्मा स्थायी निर्धार्यते यदि का नाम प्रत्यविज्ञेसा किंवा तस्यः प्रयोजनम्। आपने प्रतिविज्ञा के आधार पर आत्मा को स्थायी सिद्ध किया यानी नित्य सिद्ध किया और आत्मा को एक सिद्ध किया। आत्मा यदि दो होते तो सुसुप्ति का अनुभव करने वाला आत्मा भिन्न और जगने के बाद जागृत का अनुभव करने वाला आत्मा भिन्न होता तो सुसुप्ति का प्रतिविज्ञा जागृत में स्मरण पूर्वक न होता, क्योंकि ये बात पहले बताया जा चुका है कि स्मृति या प्रतिविज्ञा उसी को होता है जिसको पहले अनुभव किया हुआ होता है। अनुभव का ही पुनर्स्मृति होता है तो उस स्मृति और अनुभव के बीच में प्रतिविज्ञा काम कर रहा है। ये प्रतिविज्ञा किस जगह पर है, प्रतिविज्ञा की क्या भूमिका है, प्रतिविज्ञा ये क्या वस्तु है बोला, इसकी जिज्ञासा आपके मन में हो सकती है। स्मृति और अनुभव, अनुभव और स्मृति, क्योंकि पहले अनुभव होगा बाद में स्मृति होती है और अनुभव और स्मृति के बीच में प्रतिविज्ञा रहता है। उसी प्रतिविज्ञा के चलते बाद में स्मरण होता है। तो स्मृति और प्रतिविज्ञा में यह अंतर होता है कि प्रतिविज्ञान के लिए जो वस्तु पहले अनुभव किया था प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, ये ध्यान देना, इसीलिए कुछ लोग प्रमाण के अंतर्गत प्रतिविज्ञा को नहीं मानते हैं तो प्रतिविज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि प्रमाण है प्रत्यक्ष शब्द अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि। कुछ लोग एक प्रमाण मानते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसी को प्रमाण मानते हैं, उसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं। कुछ बात प्रवचन की में कोई ऐसी बात आ गई और आपने सुन ली और उसके बाद आप चले जाओ बाहर और सत्संग की चर्चा करते हुए आपने उस बात को कह दिया किसी के सामने, तब वो सुनने वाला व्यक्ति जिससे आप कह रहे हो वो सुनने वाला व्यक्ति कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तब आप उसके सामने बड़े जोर लगाकर कहोगे कि नहीं ये बात सही है, तुम किस आधार से कह रहे हो ये बात सही है, तो आप बड़े भरोसे से कहोगे कि हमने प्रेमपुरी आश्रम में स्वामी जी के मुख से हमने सुना है, खुद मैंने सुना है। इतना भरोसे से आप जो कह रहे हो इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं खुद उपस्थित था और मैंने अपने कानों से सुना है स्वामी जी ने कहा है। अब भाई स्वामी जी भी गलत भी तो कह सकते हैं स्वामी जी, तो आपको भरोसा है कि स्वामी जी गलत नहीं कह सकते, प्रमाण पूर्वक स्वामी जी इस बात को कहते हैं, इसलिए स्वामी जी के बारे में हमें शंका नहीं करना है और उस बात को मैंने अपने कान से सुना, ये शब्द प्रत्यक्ष हुआ, तभी जाकर आप दूसरों को कहोगे। और वो व्यक्ति भी जब स्वामी जी का नाम आप लोगे तब तो कहेगा कि स्वामी जी ने कहा है, अच्छा भाई तो फिर हम खुद स्वामी जी के पास जाकर इस बारे में स्पष्टीकरण लेंगे, तब वो आएगा फिर उसके बाद स्पष्टीकरण लेगा, फिर हम प्रमाण युक्ति अनुभूति इन सब के आधार पर उसको समझा देते हैं तो उसके शंका की निवृत्ति हो जाती है, वो विश्वस्त होकर चला जाता है कि हां ठीक कह रहे हैं आप। तो ये होता है, इसको कहते हैं प्रमाण। क्योंकि वेदांत में प्रमाण को और लक्षण को बड़ा महत्व दिया गया है। ये कहते हैं कि लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि, कोई भी वस्तु आप जो देख रहे हो वह जिस रूप में दिख रहा है उसी रूप में है कि नहीं, इसको ठीक प्रूफ करने के लिए आपके पास दो साधन की आवश्यकता पड़ती है। जब उन दो साधनों का प्रयोग करके उसके परीक्षण करते हो तो उन दो साधनों में वह खरा उतरता है, तब आपके मन में उस वस्तु के बारे में पक्का हो जाता है कि हाँ ये वस्तु यही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह प्रमाण और लक्षण से वो वस्तु घट रहा है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, वेदांत में वाक्य आता है, कोई व्यक्ति केवल प्रतिज्ञा कर देने से, मुख से कह देने से मात्र से वह पदार्थ सिद्ध नहीं होगा। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में मुख से एकदम कह दिया कि वस्तु ऐसा है, इतनी मात्र से वो वस्तु सिद्ध नहीं होगा। उसने जो बात कही है उस वस्तु के बारे में उसके अनुकूल प्रमाण और लक्षण मिलता है कि नहीं, ये समझदार व्यक्ति प्रमाण और लक्षण को प्रयोग करके तब उसके कथन को प्रमाणित करना चाहेगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, यहां आपने प्रतिज्ञा ये इस युक्ति से, प्रतिज्ञा के माध्यम से आत्मा के बारे में दो चीज सिद्ध करने की कोशिश की। एक चीज तो आत्मा नित्य है, इस बात को सिद्ध करने की आपने कोशिश की। दूसरी बात है कि आत्मा एक ही है, इस बात को भी सिद्ध करने की आपने कोशिश की। क्योंकि प्रागव स्वाप समिति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायते, जागृत में जागृत अनुभव करने वाला आत्मा, स्वप्न में स्वप्न अनुभव करने वाला व्यक्ति और सुषुप्ति में सुषुप्ति अनुभव करने वाला व्यक्ति, ये तीन अवस्था के तीन अनुभवकर्ता ये अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। कैसे सिद्ध हो रहा है ये कही है, तब कहते हैं कि नहीं, सुषुप्ति का जागृत में आकर वह स्मरण करते हुए ये कहता है, इसके बीच में प्रतिविज्ञा ये काम करती है कि उसी व्यक्ति को स्मृति होती है जिसने पहले अनुभव किया है, उसी व्यक्ति को होगा, दूसरे व्यक्ति को स्मृति नहीं होती है। इसलिए पहले देखने वाला व्यक्ति और स्मरण करने वाला व्यक्ति के बीच में ये प्रतिविज्ञा का अवस्था है, वह प्रतिविज्ञा ये सिद्ध करता है कि वही व्यक्ति यह है। हमने इस बारे में बहुत कहा है, देखो प्रत्यक्ष में और स्मरण माने प्रतिविज्ञा में ये अंतर है। प्रत्यक्ष में जो वस्तु सामने होता है उस वस्तु को प्रमाण द्वारा, इंद्रियों द्वारा देखा जाता है और उसमें व्याप्ति दोष आदि न हो, लक्षण विकल आदि न हो, यत्वाभास आदि न हो और ठीक प्रमाण के द्वारा वह परीक्षण होने पर वो वस्तु के बारे में ज्ञान होता है, ये वस्तु ऐसा है, ये प्रत्यक्ष है। और प्रत्यभिज्ञा में ये होता है कि पहले देखा हुआ वस्तु और आज देखे हुए वस्तु, ये दोनों वस्तुओं के बीच में एक प्रत्यभिज्ञा विद्यमान रहता है। वह ये है कि बहुत लोगों ने प्रत्यभिज्ञा को स्मरण के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत ले लिया और अलग प्रत्यभिज्ञा नहीं मानी, लेकिन शंकराचार्य जी स्मृति में और प्रत्यभिज्ञा में अंतर मानते हैं। स्मृति वहां होती है वस्तु पहले दिखा हुआ हो और उस वस्तु का जो ज्ञान आपके पास हो और उस ज्ञान का आप कालांतर में और देशांतर में वो वस्तु न दिखने पर भी उसके ज्ञान का और उस वस्तुओं का आप स्मरण करते हैं, तो वहां स्मृति होता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कालांतर वस्तु, दिखा हुआ वस्तु, पहले कभी दिखा हुआ वस्तु, वही वस्तु कालांतर में माने आज जाकर फिर कहीं दूसरी जगह दिखाई पड़ता है, तब उस पहले दिखे हुए वस्तु में और आज दिखने वाले वस्तु के बीच में जो एक समन्वय करने का तत्व है और उसके द्वारा जो स्मृति जग गई है, ये वस्तु को तो मैंने 10 साल पहले वहां देखा था, ये केवल स्मृति नहीं है, क्योंकि वह वस्तु आज प्रत्यक्ष सामने है। 10 वर्ष पहले भी वह प्रत्यक्ष हुआ था, 10 वर्ष के बाद भी वह वस्तु प्रत्यक्ष हुआ था। अब इधर 10 वर्ष पहले का देश और काल अलग है, आज 10 वर्ष से बाद का देश और काल अलग है। दोनों देश और काल के बीच में एकता संभव नहीं है, क्योंकि वह भूतकाल में चला गया, आज वर्तमान काल में है। वह दूसरे जगह पर था, आज दूसरे जगह पर खड़े हैं। इसके बावजूद भी वो दोनों की एक रूपता बनाने वाला प्रतिविज्ञा होता है। स्मृति के लिए वर्तमान में वस्तु प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों में से बहुत हरिद्वार गए हो महाकुंभ मेले में, वहां जो कुछ भी देखा है, आज हरिद्वार नहीं है यहां, आज कुंभ मेला भी नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है, वही वातावरण यहां नहीं है, फिर भी आप उसका स्मरण आज कर सकते हैं। आप वह केवल स्मरण होगा, वह प्रतिविज्ञा नहीं कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं? वह प्रतिविज्ञा नहीं कहलाएगी, केवल स्मरण होगा उसका। स्मरण में और प्रतिविज्ञा में ये अंतर आप समझ लेना। स्मृति के लिए पहले दिखना जरूरी है, वस्तु का होना जरूरी है, उस वस्तु का दिखना जरूरी है, उस वस्तु का अनुभव होना जरूरी है, उस वस्तु के बारे में सही ज्ञान होना जरूरी है। तो देखा और सही ज्ञान हो गया, तब वह ज्ञान आपके में संस्कार के रूप में विद्यमान था, वो सब कुछ आपके अंतःकरण में संस्कार के रूप में रह गया। अब कालांतर में आप उसको स्मरण कर सकते हैं, स्मरण करने के लिए वह वस्तु की आवश्यकता नहीं, वह वातावरण की आवश्यकता नहीं, उस देश काल की आवश्यकता नहीं है। भिन्न देश में, भिन्न काल में, भिन्न परिस्थिति में, भिन्न अवस्था में आप उसको बैठकर स्मरण कर सकते हैं। लेकिन प्रतिविज्ञा में ऐसा नहीं चलेगा, आप कमरे के अंदर बैठकर स्मरण करके प्रतिविज्ञा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जो वस्तु पहले देखा था वही वस्तु आज भी दिखना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो सामने होते ही आपको यह निश्चय होगा कि इस वस्तु को 10 साल पहले मैंने देखा था। वस्तु सामने आने पर जब आपको ये पक्का हो कि इस वस्तु को 10 वर्ष पहले फलाने जगह फलाने परिस्थितियों में मैंने देखा था और वही वस्तु आज इस जगह पर इस परिस्थिति में मुझे दिख रहा है, वह पहले देखे हुए वस्तु का और आज दिखते हुए वस्तु के बीच में ये प्रतिविज्ञा के चलते एकता सिद्ध करता है। ये सिद्ध नहीं कि वो वस्तु अलग था ये वस्तु अलग था, ये होने नहीं देगा। ये प्रतिविज्ञा की उपस्थिति, ये विशेषता है। ये प्रतिविज्ञा विशेष करके स्वयं देवदत्त तत्त्वमसि इस वाक्य के शोधन में इस प्रतिविज्ञा का प्रयोग होता है। स्वयं देवदत्त, स्वयं देवदत्त। कोई आपको कहे कि आप किसी नए जगत चले गए, मान लो कि आप 50 वर्ष या 25 वर्ष पहले कहीं गए थे और 25 वर्ष 30 वर्ष के बाद फिर पुनः आपको वहां जाना पड़ा और वहां गए तो वहां के व्यक्ति ने कहा कि आपको शहर घुमाते हैं, तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको शहर घुमाता हूं। तो आपने कहा कि नहीं, 25 वर्ष पहले मैं आया था, ये शहर घूम चुका हूं। तो वो कहेगा कि नहीं नहीं 25 वर्ष पहले का शहर दूसरा है, आज का शहर अलग है, क्योंकि इस बीच में इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। तो आपके मन में इच्छा हो गई कि अच्छा तो फिर घूमने चलते हैं, आपको ऐसे ऐसे जगह में ले जाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा ऐसा चीज, तो आपको उसके गाड़ी में बैठ गए या उसके पीछे लगकर चल पड़े। वो लेकर चला गया एक जगह,
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kazhachinga Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम कलरचिंगर है। कई शताब्दी पूर्व की बात है, तमिलनाडु में पल्लव कुल के एक विख्यात राजा थे कलरचिंगर। उन्होंने उत्तर दिशा में दूर दूर तक सैनिक अभियान करके बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। उसके बाद वे अपनी प्रजा की नीति पूर्वक पालन करने में जुट गए। वे भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए प्रसिद्ध शिव स्थलों की यात्रा पर निकले। विभिन्न धामों में ईश्वर के विग्रहों के दर्शन करते हुए कलरचिंगर तिरुवारूर पहुंचे। विशाल मंदिर की परिक्रमा करने के बाद गर्भगृह में जाकर अधिष्ठाता देव वाल्मीकि नाथ के ध्यान में मग्न थे। इसी बीच उनकी पटरानी मंदिर की आंतरिक परिक्रमा में घूमते हुए उस मंडप पर पहुंची, जहां भगवान को समर्पित करने के निमित्त विविध वर्णों के सुगंधित पुष्पों की माला गूंथी जा रही थी। सुरुचिपूर्ण ढंग से रंग बिरंगे फूलों की माला पिरोई जा रही थी। पटरानी का ध्यान मंडप के नीचे पड़े एक मनोहर पुष्प पर गया। रानी ने उसे उठाया और मंदिर की प्रथा से अनभिज्ञता के कारण फूल को सूंघ लिया। संयोग से यह दृश्य चिरुक्त नैयर नामक एक कट्टर भक्त ने देख लिया। उन्होंने यह कहकर कि भगवान को अर्पित करने वाले पुष्प को सूंघ कर रानी ने अपराध किया है, झट से उनकी नाक काट डाली। रानी की चीख पुकार सुनकर राजा तुरंत दौड़ पड़े। घटनास्थल पर पहुंचकर सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यह दंड पर्याप्त नहीं है। पूजा के योग्य पुष्प को सूंघ जाने के लिए नाक तक ले जाने में हाथ सहयोगी रहा है, अतः हाथ भी दंड का पात्र है। यूं कहकर राजा ने पटरानी का हाथ भी काट डाला। इस घटना का विश्लेषण आवश्यक है। राजा कलरचिंगर अनेक युद्धों में विजयी हुए। संभव है किसी युद्ध के बाद किसी अन्य धर्म को मानने वाले राज्य की कन्या या प्रदेश की कन्या से विवाह किया हो। यह इसलिए संभव है कि जब राजा गर्भगृह में परमेश्वर की उपासना में लीन था, उस समय रानी पति के संग न होकर प्रकार परिक्रमा में फूल गूंथने वाले मंडप में घूम रही थी। यह संभवतः राजनीतिक कारणों से किया गया विवाह था। यदि तमिल प्रदेश की कन्या होती या शैव धर्म को मानने वाली होती तो पूजा के फूल को सूंघने की भूल न करती। इस पर भी राजा द्वारा या शिव भक्त चिरतुणयार द्वारा दिया गया यह कठोर दंड जिस कट्टरता का परिचय देता है, वह कालांतर में स्वीकार नहीं हुई। प्राचीन काल में ऐसा शायद स्त्री की दुर्लभ सामाजिक स्थिति के कारण भी हुआ होगा, या फिर एक उदाहरण रूप ऐसा हुआ हो। निसंदेह आज के विचारशील नवीन सामाजिक धार्मिक परिवेश में किसी भी रूप में ऐसा कृत्य स्वीकार नहीं हो सकता। पौराणिक घटना के रूप में ही इसका एक स्थान है। शिव भक्तों की दो श्रेणियां हैं, प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाले और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले। कण्णप्पर जैसे भक्त शास्त्र और विधि निषेध को नहीं मानते थे, वे तो स्वयं प्रेम रूप हैं, प्रेमा भक्ति में अपने आप को ही भूल जाते हैं। शिव गोचरियार चिरतुणयार जैसे सिद्धांतवादी शास्त्र में विधि विधान को कट्टरता से मानते थे। आगम शास्त्रों में शिव पूजा के योग्य सामग्री को अपवित्र हाथों से स्पर्श करना महान पाप माना गया है, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि प्रभु ने तिन्नन कण्णप्पर द्वारा चढ़ाए गए मांस, अतिपत्तर द्वारा चढ़ाई गई मछली को भी स्वीकार किया है। कलरचिंगर द्वारा अपनी रानी को दिया गया दंड इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि भक्तों के समक्ष पति पत्नी अथवा पुत्र आदि का कोई संबंध नहीं। वे तो पूर्ण रूप से अपने प्रभु शिव के प्रति मन वचन और कर्म से समर्पित हैं। इसीलिए कलरचिंगर को नायनमार में एक उच्च स्थान मिला है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तब इस अवस्था के परिपूर्ति तो आपके कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आपकी कृपा होगी तो विघ्न भी प्रवेश नहीं करेंगे, आपकी कृपा होगी तो आप सर्वशक्तिमान हैं इसलिए कार्य भी पूरा हो जाएगा, आपकी कृपा होगी तो आप सर्वज्ञ हैं इसलिए जो कार्य हम करते हैं उसमें विधि भी पूरी हो जाएगी, त्रुटि भी नहीं रहेगी। इन भावों को हृदय में धारण करते हुए कार्य आरंभ में मंगलाचरण करने की हमारी वैदिक परंपरा है, और स्वयं शंकराचार्य जी मंगलाचरण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? खुद मंगल रूप होते हुए भी मंगलाचरण रहे, तो गीता में जो बताया है यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते शिष्य शिक्षा यही। शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भी गुरु को मंगलाचरण करते हुए कर्म का आरंभ करे, अन्यथा फिर वो कर्म पूरा होने पर अहंकार की वृद्धि होगी, मैंने किया। क्योंकि मंगलाचरण कर्म करने से कर्म आरंभ किया है तो भगवान ने पूरा किया, ये देख लो। अब कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर दुखी होगा, रोएगा। मंगलाचरण करते हुए कर्म करोगे तो भाई ये भगवान की इच्छा है, उसकी मर्जी होती पूरा हो जाता, उसकी इच्छा नहीं है तो पूरा नहीं हुआ, रुक गया, और क्या। तो हम क्या, हम तो शूद्र है, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है, पूरा करना भगवान का काम है, तो ग्लानी नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा। सबसे पहले भगवान शिव ने, शंकराचार्य ने मंगलाचरण में शिव और शक्ति को दोनों को संयुक्त स्मरण किया, संयुक्त केवल शिव का स्मरण नहीं शक्ति को भी। ये श्लोक शिव शक्ति संयुक्त मंगलाचरण का है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कभी सुना हो, नहीं सुना हो, महात्माओं ने बताया है। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, दूसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। नमः करते हुए कार्य आरंभ करते हैं तो उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं, यानी नमः शब्द का अर्थ ही होता है कि इस कार्य में मैं प्रमुख नहीं हूं, इस कार्य में आप ही प्रमुख हैं, इसकी सफलता और असफलता में आपका ही योगदान रहेगा, मेरी कोई भूमिका नहीं रहेगी। मैं मैं नहीं, जो कुछ है आप ही है। षटपदी में शंकराचार्य जी लिखते हैं ना, सामुद्रो ही तरंगा न क्वचन तारंगो समुद्र, देख लो। सत्य भी भेदापगमे नाथ, ये श्लोक है, हे नाथ ये बिल्कुल सत्य है, पारमार्थिक सत्य है कि आप और मेरे बीच में रंच मात्र भी भेद नहीं है। सत्य भी भेद अपगम, सारे भेदों का अपगम है। सत्य भी भेद अपगमे नाथ, फिर भी तवा अहम न मामकी नस्तम, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे नहीं हो। क्या सुंदर बात है, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे नहीं हो। भक्त लोग तो यही कहते हैं कि भगवान तो मेरे भगवान है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान तुम मेरे नहीं हो। हाँ। क्या सुंदर बात है, ये न समझने वाले इस श्लोक का अर्थ नहीं कर पाते हैं। इसका भाव ये है, हे परमात्मा मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपके होने न होने में मुझ पर निर्भर नहीं करता है। क्या समझे, इसका अर्थ यह है, मेरे होने न होने में आप पर निर्भर करता है। आपकी कृपा है, आपका अस्तित्व है, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है, तब मैं हूं। लेकिन इसका उल्टा व्यतिरेक नहीं है, मेरी कृपा है तब आप हैं, ऐसा नहीं है। हा? जीव की कृपा होकर परमात्मा है कि परमात्मा की कृपा से जीव है, तब क्या हुआ? शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? वैष्णव लोग इसका गलत अर्थ कर देते हैं। तुम मेरे हो कहो, भक्त ये कहे कि तुम मेरे हो, भगवान मेरे हैं। मेरे हैं का मतलब क्या? मेरे हैं का मतलब हो गया कि भगवान छोटा हो गया, मैं बड़ा हुआ, तुम मालिक हो गए ना। तुम किसी भी वस्तु को ये मेरा है कब कहते हो, बोलो है? बोलो ना, किसी भी वस्तु को ये मेरा है कब बोलते हो? जब उस पर आधिपत्य है, उस पर पूरा हक है, उस पर पूरा स्वामित्व है, तब ना तुम कहोगे कि ये मेरा है, है? तो उस वस्तु तुम पर आश्रित हुआ कि नहीं, तुम्हारे पर आधारित हुआ कि नहीं, है? क्या परमात्मा ऐसा है? तभी तो शंकराचार्य जी कहते हैं, हाँ, सत्यपि भेदापगमे नाथ। ये बात बिल्कुल सत्य है, वेदांत दृष्टि से विचार करें तब आपके और मेरे बीच में भेद नहीं। तत्व दृष्टि से विचार करें तो महाकाश और घटाकाश में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी घट उपाधि के चलते घटाकाश महाकाश के आश्रय में है, महाकाश पर आश्रित है घटाकाश, लेकिन घटाकाश महाकाश घटाकाश पर आश्रित नहीं है। क्या दुनिया में सब घटाकाश मिलकर एक महाकाश बना है, ऐसा है क्या? इसका मतलब घटाकाश नहीं रहेंगे तो महाकाश ही नहीं रहेगा क्या? हैं? घटाकाश क्या बोल रहा है महाकाश से, बोलो। तब जाकर ये स्तोत्र का अर्थ बुझो, समझोगे तुम लोग। घटाकाश महाकाश से क्या कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है घटाकाश, मान लो महाकाश से, हे महाकाश सत्य भी भेदापगमे। ये वास्तविक सत्य है कि तुम्हारे और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी ये घट उपाधि के चलते आप में और मेरे में भिन्नता हो गया है, नहीं हो गया, क्योंकि आप बड़े हो गए मैं छोटा हो गया, किसके चलते?

आप में और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी इन उपाधियों के चलते आप में और मेरे में भेद खड़ा हो गया। आप महान रह गए, मैं क्षुद्र हो गया। तवाहम न माम की नस्तुम, आप मेरे हैं, तब अहम मैं तुम्हारा हूं, लेकिन आप मेरे नहीं हैं। क्या मैं मर जाऊं तो आप रोओगे? कौन बोल रहा है? जीव किससे? भगवान से। क्या कह रहा है? क्या मैं मर जाऊंगा तो आप बैठे बैठे रोओगे? बोलो, जीव मरेगा तो परमात्मा बैठे बैठे रोएगा? है, तुम लोग बोलो ना भाई, नहीं रोएगा? तुम क्यों रोते हो? अब परमात्मा मरेगा तो तुम रोओगे ही रोएगे, नहीं रोओगे? है, अब परमात्मा नहीं मरेगा तो तुम मरोगे? ये किसने कह दिया तुमको? परमात्मा नहीं मरेगा तो तुम मरोगे? हैं? महाकाश का नाश होगा कि नहीं? तो महाकाश का नाश नहीं होगा तो क्या घटाकाश का नाश होगा? घट उपाधि का नाश होगा, घटाकाश का नाश नहीं। तुम नहीं समझते हो, इसलिए तुम कह देते हो कि परमात्मा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। अरे भाई, परमात्मा न रहना संभव ही नहीं, इसलिए तुम्हारा न रहना भी संभव नहीं है। सत्य विभेद अपगमे नाथ तव अहम न माम की नस्तुम। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। सामुद्रोही तरंग, कोई भी व्यक्ति तरंगों को देखता है और पूछता है कि यह तरंग किसका है, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि समुद्र का तरंग है। जबकि तरंग और समुद्र में कोई रंच मात्र भी भिन्नता नहीं है। समुद्र और तरंग में रंच मात्र भी भिन्नता न होते हुए भी कहने के समय में कहने वाला क्या कहता है, ये तरंग किसका है? पूछने पर उत्तर क्या देता है? समुद्र का है। और कोई पूछे समुद्र किसका है? है? समुद्र किसका है? तो कोई उत्तर देता है कि तरंग का है। तरंग को तो समुद्र कहते हैं, समुद्रे भव समुद्र, लेकिन समुद्र को कोई तारंग कहेगा? तारंग माने तरंग से होने वाला है क्या समुद्र? नहीं है। सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम न माम की नस्तम सामुद्रो ही तरंग न क्वचन तारंगो समुद्र। बोलो, समुद्र तारंग नहीं है, तरंग सामुद्र है, लेकिन समुद्र तारंग नहीं। समुद्र तरंग से पैदा नहीं हुआ, तरंग पर जी नहीं रहा है, तरंग पर आश्रित नहीं है। बात समझ गया कि नहीं? इसी तरह जीव परमात्मा का है, लेकिन परमात्मा जीव का नहीं है। परमात्मा का है इसलिए जीव पर परमात्मा का अनुशासन चलेगा। परमात्मा जीव का नहीं है इसलिए क्या जीव परमात्मा पर अनुशासन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमात्मा जीवात्मा का नहीं है इसलिए जीवात्मा का अनुशासन नहीं चलेगा। ये भक्ति भाव है, द्वैताद्वैत भक्ति भाव। मूल रूप में अद्वैत होता हुआ भी औपाधिक भेद को स्वीकार करके शंकराचार्य जी ये भाव व्यक्त कर रहे हैं शिवानंद लहरी के माध्यम से। पहला श्लोक बड़ा सुंदर है, मंगलाचरण।

इयम नति, मेरा यह नमस्कार है। किसके प्रति नमस्कार है ये तुम्हारा? कलाभ्याम चूड़ालम कृत शशि कलाभ्याम निज तप फलाभ्याम भक्तिषु। हा कलाभ्याम चूड़ाला, ये भ्याम शब्द दो वचन, समझे कि नहीं? ये भ्याम जो कहा है ना, दो के लिए कहा जाता है। राम कृष्णाभ्याम नमः, राम और कृष्ण दोनों को एक ही बार नमस्कार करना होगा तो भ्याम लगाना पड़ेगा है। तो एक व्यक्ति ने सोचा, पूछा हमसे, महाराज ये राम तो राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, ये भ्याम क्या है? उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पूछा है उमा और महेश्वर, तो उमा तो उमा हो गई, महेश्वर महेश्वर हो गए, ये भ्याम क्या है महाराज? लक्ष्मी तो लक्ष्मी हो गई, नारायण नारायण हो गए, ये भ्याम क्या होता है? है समझ में आया कि नहीं? भ्याम क्या है? दोनों को जोड़कर है। इसलिए नारायण, यदि केवल नारायण को नमस्कार करनी हो, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नमः, ये लक्ष्माय नमः नहीं होता है, लक्ष्मी नमः, और दोनों के एक साथ बोलना हो तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। नारायण का आय भी गया, लक्ष्मी का अय भी गया, लक्ष्मी नमः नारायणाय नमः, दोनों जाकर एक आ गया। क्या आ गया? भ्याम। ये भ्याम दोनों को जोड़ने वाला है, भ्याम दोनों को अलग करने वाला नहीं, तोड़ने वाला नहीं है, भ्याम दोनों को जोड़ता है। भ्याम क्या है पता है तुमको? हंसने की बात कर दूं, है शादी करते समय, तुम लोगों ने तो शादी किया होगा ना, किया कि नहीं? शादी किया है ना? हमको तो पता नहीं भाई। वर और वधु है ना, लड़का और लड़की दोनों के स्वयंवर के समय में दोनों के कंधे में एक कपड़ा होता है कि नहीं, और बीच में जो गांठ होती है ना, उसका नाम व्याम। क्या है? बीच में एक गांठ लटकती है कि नहीं? वर और वधु के बीच में एक गांठ लटकती है कि नहीं? दो कपड़ों के छेड़ा बांध देते हैं ना, जनेऊ सुपारी पैसा डालकर, उस ग्रंथि का नाम व्याम है। मतलब क्या हुआ? वो दोनों को जोड़ रहा है। शादी हो जाने के बाद वो गांठ फूका खोल दिया जाता है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई तब तक क्या हुआ? दोनों को उसने जोड़ रखा। ना लड़के के कंधे से कपड़ा हटेगा, ना लड़के के कंधे से हटेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके कंधे में भी वो ऐसा रहेगा, उसके में भी ऐसा रहेगा, वो सब कुछ उसको संभालेंगे, नहीं गिर ना जाए कहीं, क्योंकि वो भ्याम है ना, दोनों को जोड़ने वाला। उसके बाद तो गांठ कपड़े में लगाई थी, गांठ पड़ गया हृदय में। गांठ लगाया था कहां? कपड़े में। पड़ गया, पड़ने गया कहां? गांठ ग्रंथि कहां पड़ गए? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी ने लिखा है, जड़ और चैतन्य की ऐसी गांठ पड़ गई, हालांकि जड़ और चैतन्य की गांठ पड़ना संभव ही नहीं है, यद्यपि मृषा फिर भी छूटत कठिनाई। और गांठ पड़ गया, अब क्या करोगे? मरते दम तक वो गांठ रहती है कि नहीं? मेरा पति मेरी पत्नी देव जी, वो गांठ मरने के बाद भी नहीं छूटता। मरते दम तो क्या, मरने के बाद भी नहीं छूटता है बाबा। फोटो लटका कर कहता है मेरी पत्नी, फोटो लटका कर कहता है मेरा पति, गांठ फेर भी है, है? देव जी, उसी का नाम क्या है? भ्याम। ये व्याकरण का शब्द है।
इसलिए अर्धनारीश्वर भगवान शिव की स्तुति में नमः शिवाभ्याम नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्ट बपुरधराभ्याम। ये इसका मतलब आधा पार्वती आधा शिव दोनों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। परस्परा बपुरधराभ्याम, आधा शरीर शिव जी के आधा पार्वती के। ये नागेंद्र कन्या ऋषिकेतनाभ्याम। तो यहां भ्याम शब्द से कलाभ्याम, दोनों की कलाओं में, कलाभ्याम चूड़ालंकृत। कला शब्द का दार्शनिक अर्थ बहुत है, वेद प्रतिपाद्य तत्व को नाम कला कहते हैं। वेद प्रतिपाद्य तत्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद द्वारा उपनिषद द्वारा जिस तत्व का प्रतिपादन किया है उसी को कला कहते हैं। इधर शिव है तो उधर ब्रह्म विद्या है, शिव में ब्रह्म है परमात्मा ब्रह्म, और शक्ति में ब्रह्म विद्या। ब्रह्म और ब्रह्म विद्या दोनों अलग नहीं हो सकते, इसलिए कालिदास जी ने कहा वागर्था विव संपृक्त वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। वाणी और अर्थ दोनों साथ साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि अर्थ कहीं रहे और वाणी कहीं रहे, इसी तरह ऐसा नहीं कि शिव कहीं रहे और शक्ति कहीं रहे, हा? शिव शक्ति एक ही साथ रहते हैं। चूड़ालंकृत शशि कलाभ्याम, शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और उसकी कला माने एक अंश, सोलह में से एक अंश, एक अंश माने द्वितीय का अर्धचंद्र को शशि कला, पूर्णचंद्र को शशि, अर्धचंद्र को शशि कला। जिनने सिर में चूड़ालम, चूड़ा अलंकृत सिर के, सिर में दोनों की जटा है, वो पार्वती की भी जटा है और शिव जी की भी जटा है, दोनों ने जटा में चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रमा को शशि क्यों कहते हैं, ये तो पुरानी मान्यता है, आप लोग भले कुछ भी कहो, एक मान्यता है कि चंद्रमा के बीच में खरगोश रहता है ना। आजकल तो कहते हैं एक बूढ़ी माई चरखा काटती है, ऐसा कहते हैं ना। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखो, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को, एक बूढ़ी माई वो चंद्रमा के बीच में बैठकर चरखा चला रही है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन पुरानी मान्यता है कि उसके बीच में शशि रहता है, शशि माने सासलो, ससलो खरगोश, खरगोश को नाम सस कहते हैं, सस, और सस संस्कृत शब्द है, और उस सस से गुजरातियों ने ससलो कर दिया, तो मूल संस्कृत से ही लिया है गुजराती शब्द ससलो। तो चंद्रमा के बीच में वो सस रहता है ससलो, तो सस रहने के कारण उसका नाम शशि हो गया। शशि का एक अंश कला, शशि कला जिन्होंने अपने सिर के मुकुट में धारण किया हुआ है, ऐसे दोनों को नमस्कार करता हूं। कलाभ्याम चूड़ालंकृत शशि कलाभ्याम निज तपः फलाभ्याम, दोनों एक दूसरे के तप के फल है। शिव पार्वती के तप के फल है, तो पार्वती शिव के तप के फल है। पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव ने घोर तपस्या की है, और शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की है, और कठोर तपस्या करने के कारण पार्वती ने शिव को पाया और शिव ने पार्वती को पाया, दोनों क्या हो गए, तप फलाभ्याम, ये तपस्या का फल है, समझे नहीं।
शंकराचार्य जी ने उस प्रसंग का स्मरण किया। आप लोगों को पुराण का प्रसंग मालूम ही है कि पहले भगवान शिव की पत्नी का नाम था सती, सती दक्ष पुत्री थी और शिव को बहुत प्यारी थी, और दक्ष प्रजापति के द्वारा उद्दंडता करने का परिणाम यह हुआ अंत में कि सती का शरीर नष्ट हो गया। और जब शिव को पता चला कि सती का शरीर खत्म हो गया तो आगे का प्रसंग आप लोगों को मालूम है कि शरीर को ही वो साथ में लेकर चलते रहे, कई दिन तक तो उस शरीर मृत शरीर को ही ढोते रहे, पुराण के प्रसंग है। अंत में देवताओं ने विचार किया कि ये तो बहुत विडंबना हो जाएगी, भगवान शिव तो सती के शरीर के अलावा और किसी का चिंतन ही नहीं कर रहे, उनका ध्यान तो केवल उसी में जा रहा है। तो सब ने विष्णु को कहा और विष्णु ने कहा कि ठीक है अब कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान को शिव को पता ही नहीं चला, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 52 टुकड़े कर दिए उस मृत शरीर के। 52 52 शक्तिपीठ हुए, जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां आज चैतन्यमय, क्योंकि सती का शरीर आपका और हमारा जैसा शरीर नहीं था। यदि आप हम का शरीर होता तो शिवजी लेके चलते और तभी सुरक्षित रहता क्या? सड़ जाता, कीड़े पड़ते कि नहीं? कई वर्षों तक लेके घूमे, कीड़े नहीं पड़े, क्यों? वो तो चिन्मय बपू था। चिन्मय बपू होने पर भी, क्योंकि उसके प्रति उनकी आसक्ति को हटाने के लिए भगवान विष्णु ने उनके टुकड़े कर दिए और जहां जहां जो जो अंग गिरा वो एक एक शक्तिपीठ हो गया। तो 52 शक्तिपीठ पुराण में प्रसिद्ध है। उसके बाद भगवान शिव ने संकल्प कर दी, अब मैं संसार में कुछ नहीं करूंगा, पर जाके कैलाश में बैठ गए और तपस्या में लग गए और कठोर तपस्या की। और उनके तपस्या करने का परिणाम यह हुआ, इधर भृत्रासुर या एक असुर, उसने वरदान मांग ली थी कि मेरी मृत्यु हो तो शिवजी के पुत्र से हो, नहीं तो ना हो। अब वो ये जानता था कि शिवजी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब जीवन में दूसरी शादी नहीं करूंगा, जाके कैलाश में तपस्या में लग गए और उनका अब शादी नहीं होगी, सती मर गई और दूसरा शादी नहीं करेंगे, पुत्र नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं मारेगा, तो मेरी यदि मृत्यु हो तो शिव पुत्र से हो, नहीं तो ना हो। परिणाम ऐसा उद्दंड हो गया कि सारे देवी देवताओं को सताने लग गया, तो सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लग गए कि भगवान शिव ये तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा वरदान मांग लिया, अब आपको शादी करना पड़ेगा और एक बेटा पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर इसी को मारेगा, तब जाकर हमको शांति मिलेगी। भगवान शिव तो कठोर तपस्या में लगे थे, क्या करें? तो उन्होंने उसी संकल्प से तपस्या की, परिणाम क्या हुआ? वो सती पर्वत की पुत्री होकर पैदा हुई। मैना और पर्वत के संयोग से पर्वत की पुत्री होकर पैदा हुई। तो कहा कि मेरी पत्नी तो है ही नहीं, अब क्या करें? बोले नहीं नहीं, आप जब से सती के देह त्याग के पश्चात तपस्या करने लग गए तब से लेकर आज तक सती इधर पार्वती के रूप में पैदा हो चुकी है, आपके तपस्या का फल है। पुराण में यह वर्णन है, इसलिए यहां शंकराचार्य जी ने उस प्रसंगों को स्मरण किया। पार्वती जो है वह शिव तप का फल है। और इधर पार्वती ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, शिव के अलावा किसी से नहीं। और बहुत समझाया गया
कि तुम उसके ब्याह शादी करने का प्रतिज्ञा मत करो, उसके पास न रहने का घर है न खाने की। शिव हापुस आम खाते हैं कि नहीं है? बोलो, तुम्हारे हापुस आम की अपेक्षा तो धतूरा खावे भांग धतूरे, रहे काज सभी काम पूरे। ना उनका भोजन ढंग का है, ना घर कहीं है उनका, श्मशान उनके संपत्ति क्या है, वैभव क्या है? श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप सृगपि निर्करोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। और ऐसे से तुम शादी करने की बात करती हो पार्वती, ऐसा मूर्खता मत करो, इससे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। पार्वती ने नहीं माना। हाँ, पार्वती ने आगे जवाब दिया, भगवान का ये सोल स्वभाव सब कुछ अमंगलमय होता हुआ भी स्मर्तृणाम परमम मंगलमय। शिव भांग खाते हैं, इतने स्मरण कोई करे ना उसका मंगल हो जाएगा। शिव अशुद्ध भस्मी लगाते हैं, इतने स्मरण करे तो उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। स्मरण करने वालों को परम मंगल होता है, इसलिए मैं शिव को छोड़कर और से शादी नहीं करूंगी। तपस्या करने लगे। कहते हैं पार्वती पहले बहुत काली थी, मेरे जैसे बहुत काली थी। जंगल में तपस्या करने लग गई, शिव जी गए घूमते हुए, देखा शिव जी बहुत गोरे, कर्पूर गौरव है ना। शिव जी कैसे हैं? गोरे हैं, कर्पूर गौरव, और पार्वती काली। शिव जी ने कहा कि ऐसे काली से कोई शादी करता है? तू ये बहुत काली है, नहीं करूंगा तेरे से शादी, चल पड़े। गोरी होती तो फिर भी मैं सोचता, ऐसे काली से नहीं करूंगा। तो पार्वती ने जब ये सुना तो उनको बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा कि तपस्या करके भी मैं गोरी होकर भी शिव जी से शादी करूंगी। तो गोर का कब तपस्या करने लग गई, कठोर तपस्या करने लगी। और उस तपस्या, क्योंकि शिव गोरे थे, पहली बार पार्वती ने देखा गोरे हैं, तो उनके गौरव वर्ण का ही उन्होंने हृदय में ध्यान किया और तपस्या किया। करते करते पार्वती गोरी हो गई एकदम। तब उनकी मां ने उसका नाम रख दिया, अरे तू तो बड़ा काली थी, अब तो गोरी हो गई। तब उसका नाम पड़ गया गौरी। तो शिव ने देखा, ये काली थी अभी गोरी हुई कि नहीं जरा देखें तो सही। तो आए, देखा तो बहुत गोरी है, वाह अब ठीक है, जोड़ी मिल गई। हा, तो भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। मतलब क्या? पार्वती के तप का फल शिव और शिव के तप का फल पार्वती। इस परस्पर शिव का पार्वती के परस्पर की तपस्या से परस्पर में उनकी प्राप्ति हुई है। इसलिए कहा निज तप फलाभ्याम, हम उसको नमस्कार करते हैं जो अपने तपस्या के फल के रूप में शिव को पार्वती की प्राप्ति, पार्वती को शिव की प्राप्ति हुई है, ऐसे दोनों को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे कहा भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम, और भक्त भी उनकी इसी तरह तपस्या करता है, भक्ति करता है, तो उनके हृदय में उस भक्ति के फल के रूप में वह शिव और पार्वती संयुक्त रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भक्तों के हृदय में भक्ति के फल के रूप में प्रकट होने के कारण उनको कहा भक्तेषु प्रकटित फलाभ्यम भवतु मे इयम नति भवतु, यह अन्वय करना। भवतु माने मेरा यह नमस्कार होवे। शिवाभ्याम अस्तोक, अस्तोक स्तोक माने थोड़ा, अस्तोक माने पूरा, स्तोक माने थोड़ा, अस्तोक माने जो थोड़ा नहीं है वो पूरा। त्रिभुवन शिवाभ्याम हृदि पुनर, दोनों त्रिभुवन शिवाभ्याम, अस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम, तीनों लोक में
सबके प्रति पूरे के पूरे किसी को छोड़े बिना पूर्ण रूप में तीनों लोक का कल्याण करने वाले दोनों होने के कारण क्या हुआ, अस्तोकम त्रिभुवन शिवाभ्याम। हाँ, शिव माने कल्याण, दोनों कल्याणकारी हैं तीनों भवन में। हृदय पुनर्भवाभ्याम, ये दोनों भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। हाँ, शिव और पार्वती कहां प्रकट होते हैं, भक्तों के हृदय में प्रकट होने के कारण हृदय पुनर्भवाभ्याम आनंद स्फुरत अनुभवाभ्याम। हृदय में किस रूप में प्रकट होते हैं, जटाजूट के सहित नहीं, आनंद स्फुरत। पार्वती भी हृदय में, भक्तों के हृदय में यदि प्रकट होंगी तो वह आनंद के रूप में, और शिव भी यदि प्रकट होंगे तो आनंद के रूप में ही हृदय में प्रकट होंगे। ऐसे हृदय में अभिव्यक्त होने वाले उस परमात्मा यानी शिव और शक्ति को संयुक्त रूप में मैं ये नमस्कार करता हूं। ये नमस्कारात्मक शिव शक्ति की संयुक्त मंगलाचरण के द्वारा शंकराचार्य जी ने स्पंद की, और आगे दूसरे श्लोक में शिव भक्ति का फल बता रहे हैं, शिव भक्ति, तो उसको फिर कल देखेंगे। है हाँ, तो एक बात आज हमारे जीवन भाई जी कह रहे थे और सुबह भी कुछ माताएं कह रही थी कि बरसात ऋतु शुरू हो गया, बरसात शुरू हो जाने के कारण सायंकाल 7:30 बजे तक प्रवचन रखने पर माताओं को विशेष करके घर पहुंचना होता है, ट्रांसपोर्टेशन की फिर तकलीफ होती है, बारिश होता है तो 6 बजे तक ही रखे, 5:30 से 6 बजे तक, सॉरी 5:30 से 7 बजे तक रखें तो आधा घंटा पहले कम करें, ये प्रस्ताव सुबह आया था। तो शायद इसी के आधार पर सभी को सुविधा हो, इसके लिए कल से ठीक 7 बजे पूरा करेंगे। आज हमने 7:30 भी नहीं किया, 7 भी नहीं छोड़ा, बीच में छोड़ा है ना, 7 से ऊपर, 7:30 से पहले बीच में जाकर छोड़ दिया है। तो कल से 7 बजे छोड़ेंगे, और ये शिवानंद लहरी सुनते समय बड़ा आनंद आएगा, एक एक भाव ऐसे प्रकट होंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आओ, और ये 13 दिन का कार्यक्रम, आज एक दिन कम हो गया तो 12 दिन तक तो अब और भी चलेगा। तो कल से फिर नियमित रूप में प्रेमप्रिय आश्रम ट्रस्ट ने श्लोक को भी फोटोकॉपी करके रखा है, आप लोग साथ साथ पढ़ते भी रहना और हम उसका अर्थ भी करते जाएंगे, और आपको मुझे लगता है स्तोत्र के अनुरूप आनंद आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि शिवानंद है इसलिए आनंद आएगा, उसका तरंग लहर चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। श्री मेहमन पर विचार चल रहा है, नौवें श्लोक से विचार चलेगा। आठ तक विचार हम लोगों ने कर लिया था। एक ब्रह्मा जी के कार्यकाल में 14 मनु दिन में होते हैं, 14 रात को। जब ब्रह्मा जी के कार्यकाल में एक मनु बदलते हैं ना, दूसरे मनु आते हैं, तो बीच का गैप होता है, तो उसमें जो है ना ब्रह्मा जी को फिर बीच में करना पड़ता है। ऐसे हमारे गिरीश भाई ने प्रार्थना किया, हमने कहा ठीक है भाई, क्योंकि जब एक मनु जाएंगे दूसरे मनु महाराज आएंगे तब प्रारंभ होगा। ऐसे ही दो महीने कार्यकाल में हमारे श्रवणानंद जी महाराज के बाद में गैप रहा, फिर माधवानंद महाराज जी के बाद में, प्रणोचतन जी महाराज जी के बाद में। तो ये जो वर्ष चल रहा है स्वर्ण निर्वाण महोत्सव है ना, स्वर्ण निर्वाण महोत्सव। निर्वाण का अर्थ तो सब जानते ही हैं। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है निर्गतो वाण अविद्यादिह दोषायस्मात् तत् निर्वाण। गीता में भगवान ने निर्वाण पद की बहुत महिमा गाई है। दुनिया में जितने भी पद हैं सारे पद आपदाओं से घिरे हैं। एक निर्वाण पद ही है जो निरापद है। वाण है अविद्या कामना वासना। अनादिकाल से जीव के हृदय में जो कामनाएं हैं, इदम मिस्यात इदम मिस्यात, यही कामनाएं बाण के समान चुभी हुई हैं। जब तक हृदय में किसी के बाण चुभा हो तब तक शांति नहीं मिलती है, परेशान होता है। जैसे ही बाण निकल जाता है स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही अनादि काल से जीवात्माओं के हृदय में जो बाण है, वे बाण जब तत्व ज्ञान से निकल जाते हैं तो निर्वाण पद की उपलब्धि होती है। तो सभी जीव निर्वाण चाहते हैं। निर्वाण मतलब कि इस बाण से छुटकारा हो अविद्या दुख कामना वासना से। वही हम लोग स्वनाम धन्य इस कल्प तरु के संस्थापक प्रेमपुरी जी महाराज के स्वर्ण निर्वाण महोत्सव को मना रहे हैं। बार बार अपने गिरीश भाई संबोधित भी करते रहते हैं, क्योंकि उपनिषद में आता है महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु। इतने भी यज्ञ महायज्ञ महोत्सव है, इनके द्वारा उस आत्मा को समझने के अनुकूल अपना अंतःकरण बनाना चाहिए। इसलिए महोत्सव मनाना भी एक शास्त्रीय कृति के अंतर्गत आता है। तो आइए प्रकृति विषय पर पहले नौ इस श्लोक का उच्चारण कर लें। ध्रुवम कश्चि सर्वम सकलम परस्त्वम ध्रुवमिदम् परो ध्रव्याध्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्ते पे तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेन्मि त्वाम् न खलु ननु दृष्टा मुखरता। यहां पर सृष्टि का वर्णन चल रहा है कि सृष्टि का कारण क्या है और सृष्टि सत है कि असत। यही प्रसंग स्वाध्याय में एक महीने से चल रहा है। तत् अनन्यतम आरंभण शब्दादिभ्य जो ब्रह्म सूत्र का विषय है, उसी को यहां पर पुष्पदंताचार्य जी ने एक श्लोकों में चर्चा किया है। ब्रह्म सूत्र में भी यह चर्चा आती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले ब्रह्म का जिज्ञासा किया, जिज्ञासा के बाद में तब कहा जन्माद्यस्यतः। यतः मतलब जिससे जन्म स्थिति और संसार का प्रलय हो, उसका नाम ब्रह्म है। यतः से यह नहीं बतलाया कि शून्य है,
या क्षणिक विज्ञान है या प्रधान है या ब्रह्म, बस यतः कह दिया, जिसके द्वारा संसार का सृजन हो, पालन हो, संहार, उसका नाम ब्रह्म। पर यतः शब्द से क्या लेना चाहिए, जैसे वहां विचार का विषय है ऐसे यहां पर भी है। इसके पहले नवें श्लोक के पहले पुष्प दंताचार्य ने कहा था कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। तो स्वात्मा राम शब्द से उस ब्रह्म का कथन कर दिया गया, जो स्वात्मा राम अपने स्वरूप में रमण करता है वो उस व्यक्ति को ये विषय मृग तृष्णा नहीं भटकाती है। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने उपनिषद में इसी बात को बतलाया है, अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, ये जो विषय है ये अतिग्रह है, इसलिए अतिग्रह है क्योंकि जबरन मनुष्य को ये विषय अपने आप में घसीट करके भटकाते हैं। आप बहुत सावधान रहते हैं फिर भी सौंदर्य युक्त रूप आंखों को आकर्षित कर लेता है। डॉक्टर सावधान कर रहा कि खबरदार मीठा नहीं खाना, फिर भी ये मिष्ठान रूपी विषय जो अतिग्रह है जबरन जीव को खींच लेते हैं। तो विषय को अतिग्रह कहा, इंद्रियों को ग्रह बतलाया। ये जो विषय है ये मृग तृष्णिका के समान है और जीवात्मा को संसार में भटकाते रहते हैं। परंतु जो स्वात्मा राम है, जो अपने स्वरूप में आनंदित है, उसको ये कभी भी भटका नहीं सकते हैं। संसार का जो आनंद है इसको बताया विषय मृग तृष्णा, और ब्रह्मानंद को स्वात्मा राम शब्द से संबोधित किया। जो विषयानंद ये क्षणिक है, और क्षणिक होने से ये हमेशा परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होने से हम उसके अनुभव को बार बार करना चाहते हैं, इंद्रियों से उपलब्ध करना चाहते हैं पर उपलब्ध नहीं होता है। परंतु आत्मा आनंद स्थायी है। परंतु स्वात्मा राम तत्व क्या है, इसका विवेचन इस नौवें श्लोक से यहां पर बतला रहे। ध्रुवम कश्चित सर्वम, इस संसार को कुछ लोग कहते हैं ध्रुव, ध्रुव मतलब कि सत कार्यवादी सांख्य। यहां पर ध्रुव पद से सांख्य दर्शन लेना, कश्चित मतलब सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि जगत सत है, और कुछ मानते हैं अपरा मतलब कि अन्य, अन्य मतलब कि बौद्ध, ये कहते हैं अध्रुवम इदम सकलम, ये पूरा संसार अध्रुव मतलब कि असत है, क्षणिक है। परो ध्रोव्या ध्रोव्ये, और तीसरे जो नैयायिक है जिनको हम आरंभवादी कहते हैं, ये आरंभवादी नैयायिक कहते हैं जगत ध्रोव्या ध्रोव्ये, कारण रूप से सत्य है, कार्य रूप से असत्य है। इस प्रकार से आपस में तीनों विवाद करते हैं। जब सांख्य ने कहा कि संसार सत्य है तो बौद्ध ने आक्षेप किया, यदि संसार सत्य है आप कह रहे कि बिल्कुल संसार घट पट मठ सब सत्य है, तो फिर जो काम घड़ा से हो रहा है वही काम मिट्टी से होना चाहिए। उत्पत्ति के पहले भी मिट्टी में जब घड़ा मौजूद है तो कारीगर जो है दंड चाक चिवर के द्वारा घड़ा क्यों बनाता है, वह मिट्टी को उठाए उससे जल का आनयन कर ले। इसलिए जगत सत्य नहीं हो सकता है, सत होता तो उसकी उपलब्धि होती और क्रियाकलाप नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से सांख्य का बौद्ध खंडन करते हैं और कहते हैं कि अध्रुवम क्षणिक विज्ञान सब कुछ है। क्षणिक विज्ञान में भी एक दोष है, यदि आप संसार को क्षणिक मान लेते हैं तो प्रतिभिज्ञा स्मृति नहीं बन सकती है। जो प्रतिभिज्ञा आप करते हैं कि मैं जो है 2 वर्ष पहले हरिद्वार कैलाश आश्रम में गया था, वहां जाकर हमने जो है पूजा पाठ किया, गंगा स्नान किया, ये मन में स्मृति हो रही है,
तो 2 वर्ष पहले जो आपने दृश्य देखा, नजारा देखा, अनुभव किया, उसका मन में संस्कार पड़ता है। संस्कार के बाद 2008 में स्मृति होती है, याद आता है। किसी ने हरिद्वार की चर्चा की तो उस स्थान का याद आता है। तो यदि क्षणिक माने तो वह तो नष्ट हो गया, उसकी स्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके मत में क्षणिक आत्मा है, क्षणिक पदार्थ, सब कुछ क्षणिक है। क्षणिक मतलब क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है, तो फिर उसकी स्मृति नहीं हो सकती है। इसलिए क्षणिक है सब कुछ, अध्रुव है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर न्यायिकों से पूछा कि भाई आप भी बताओ संसार कैसा है, तो उन्होंने कहा कि द्रव्या द्रव्य, इसका अन्वय करना, एतस्मिन समस्ते जगति द्रव्या द्रव्य व्यस्त विषय गदति परो गदति। ये जो समस्त संसार है, पूरा ब्रह्मांड, इसको कहते हैं द्रव्या द्रव्य। द्रव्या द्रव्य का अर्थ है परमाणु रूप से सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनके परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, इनको ये द्रव्य मानते हैं, सत मानते हैं, नित्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, इनको कहते हैं बिल्कुल द्रव्य है, सुनिश्चित है, नित्य है। और इसके बाद जो भी संसार है वह असत है। असत मतलब कि कारण में पहले नहीं था, बाद में कारीगर ने इनको प्रकट किया। नैयायिक जो है कट्टर ईश्वरवादी, ईश्वर को सिद्ध करते हैं। नैयायिक कहते हैं कि क्षित्यंकुरम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, एक छोटा सा घड़ा बनाने के लिए कारीगर चाहिए, एक मकान दुकान बनाने के लिए कारीगर चाहिए, बिना कारीगर के जब कोई भी काम नहीं हो सकता है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप कैसे हो जाएगा। इतनी बड़ी नदियां हैं, सागर है, जो सागर की इतनी गहराई है, हिमालय की ऊंचाई है, नदियों के जल का प्रवाह है, इसको भी कोई न कोई करने वाला होना चाहिए, ये अपने आप नहीं हो सकता है, न शून्य से हो सकता है, न क्षणिक विज्ञान से, न प्रधान से, तो पारिशेष्यात् जिसको बनाने वाला है वही ईश्वर है। क्योंकि अस्मदादि के द्वारा इनका निर्माण असंभव है। तो नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को बनाया और 2 विभाग किया, परमाणु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन तो ध्रुव है, नित्य है, और जो पदार्थ है असत्य है। इस प्रकार से न्याय दर्शन कहता है। ये आपस में ही विचार विवाद करते रहते हैं। तैर विस्मित इव, पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि मुझे इन सब बातों को सुनने के बाद बड़ी हैरानी होती है। विस्मित बोलते हैं आश्चर्य। तई मल्लय की दार्शनिकों के द्वारा इस संसार के विषय में इस प्रकार से विवाद करने पर मुझे बड़ा विस्मय हैरानी होती है। इतने बड़े बड़े आचार्य, न्याय दर्शन के आचार्य गौतम महर्षि, बौद्ध दर्शन के जन्मदाता गौतम बुद्ध, और सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल महर्षि, ये तो 3 प्रमुख आचार्य हैं। इसके बाद चार्वाक दर्शन है, जैन दर्शन है, और भी दर्शन है, इनको भी समय लेना ऊपर से। इतने बड़े ऋषि महर्षि होकर के भी बेचारे इस संसार के विषय विवाद करते हैं। कोई कहता है कि ये संसार असत्य है, कोई बोलता है सत्य है, कोई बोलता है सत असत उभय रूप है, कोई बोलता है स्वभाव से उत्पन्न हुआ, कोई बोलता है क्षणिक विज्ञान है, किसी ने कहा कि परमाणुओं से उत्पन्न हुआ, तो कोई बोलता है कि शून्य से ही उत्पन्न हुआ। आज भी विवाद चल रहा है। जो विवाद पुष्पदंताचार्य जी के जमाने में चल रहा था, वह आज भी विवाद का विषय है। जेनेवा में 10,000 वैज्ञानिक खोज कर रहे कि ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ किससे उत्पन्न हुआ, शून्य से उत्पन्न हुआ या परमाणु इसके मूल में या कोई शक्ति है। ये विवाद पहले भी चल रहा था। तो पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है, इसीलिए त्वाम स्तुवन न जी रेमी, मैं तो बस आपकी, महादेव का, शंकर का, परमात्मा का स्मरण कर रहा, स्तुति कर रहा हूं।
क्योंकि इन लोगों की जो मुखरता धृष्ट है, ये बड़े धृष्ट और मुखरवादी हैं, जो परमेश्वर का भी अपलाप करते, खंडन करते हैं। कहते हैं जगत को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं, अपने आप हुआ, शून्य से हुआ, क्षणिक विज्ञान से हुआ। इसीलिए मुझे इस बातों को सुनने के बाद हंसी आ रही है। जिस प्रकार से आज विवाद का विषय है कि संसार को परमात्मा बनाया अपने आप हुआ, वही विवाद इनके सामने भी चल रहा था। सांख्य कहता है जैसे कि एक सोना है, उस सोने में पहले से मूर्ति मौजूद है। स्वर्णकार उस सोने को तपा करके सांची में ढाल देता है, मूर्ति निर्मित हो गई। तो कारण भी सत्य है, कार्य भी सत्य है। इसी विषय को न्यायिक कहता है कि जैसे मान लो कोई पाषाण है, पाषाण में मूर्ति पहले से मौजूद है, कारीगर अपद्रव्य को हटा देता है, अपद्रव्य को हटाते मूर्ति अव्यक्त हो जाती है। अब इसी चीज को सांख्य कहता है कि पहले सत था, न्यायिक कहता है कि कारीगर ने उत्पन्न किया। देखो एक ही पाषाण खंड है, उस पाषाण खंड में से जो मूर्ति निर्मित हुई उसके विषय में जितने दार्शनिक उनका मतभेद है। सांख्य बोलेगा पहले से मूर्ति मौजूद थी, कारीगर अपद्रव्य को अलग किया। न्यायिक बोलेगा पहले मूर्ति असत थी, बाद में उत्पन्न हुआ। वेदांत बोलेगा कि उसी पाषाण का विवर्त है, पाषाण पर कल्पित है, आरोपित है। पाषाण नहीं होता तो मूर्ति निर्मित नहीं होती। कारीगर ने पाषाण पर अपने मस्तिष्क से एक आकार प्रकार बनाकर मूर्ति को बना दिया, तो पाषाण पर आरोपित है। तो संसार के विषय में सारे लोग विवाद किया करते हैं। इसके विषय में उपनिषद में आता है, आरामम तस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। उस परमात्मा के आराम मतलब संसार को सभी देख रहे हैं, पर उस परमात्मा को कोई भी नहीं देख रहा है। संसार का जो पदार्थ है, इसके विषय में सारे दार्शनिक विवाद कर रहे हैं, ये जितने पदार्थ हैं सत्य हैं कि असत्य हैं, कि उभय हैं कि क्षणिक रूप में है, परंतु इसको जो बनाने वाला कारीगर है उसको कोई भी विचार नहीं करता है। इसलिए वेदांती ने कहा कि ये विवर्त है। जिस प्रकार से टेलीविजन में आप सारे चलचित्र को देखते हैं, बड़ी बड़ी नदियां दिखाई पड़ती हैं, सागर है, पहाड़ है, पर्वत है, परंतु स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, दिखाई सब कुछ पड़ रहा है, पर्दे पर सब कुछ दिखाई पड़ने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही चैतन्य पर इनाम रूपात्मक प्रपंच सब कुछ विवर्त है। विवर्त मतलब कि प्रातीतिक मात्र है, पर उस चैतन्य को छोड़कर कुछ भी नहीं है। पर अज्ञानी जीव केवल उन पदार्थों को पकड़ करके विवाद करता है। जो विवर्तवादी है, वेदांती है, ज्ञानी पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं, वह तो भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके आशीर्वाद से ये जो संसार है, इसको कि गौतम महर्षि ने दुखमय कहा, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। ये जो है ना बौद्ध दर्शन के चार महावाक्य हैं, जैसे अपने यहां चार हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसी प्रकार से वहां पर भी चार महावाक्य हैं। पहला है सर्वम शून्यम शून्यम, ये सारा पदार्थ शून्य रूप है, शून्य से उत्पन्न हुआ, शून्य में स्थिर है, शून्य में विलीन हो जाएगा। और दूसरा वाक्य है सर्वम दुखम दुखम, ये सारा संसार दुखमय है। तीसरा महावाक्य सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, ये सभी पदार्थों का अपना एक स्वभाव है, लक्षण है। चौथा है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये सब कुछ क्षणिक है। ये चार महावाक्य के बौद्ध दर्शन में है। यहां कुछ दंताचार्य जी कहते हैं कि यही जो जगत अज्ञान काल में दुखमय प्रतीत होता है,
जब अधिष्ठान का साक्षात्कार होता है तो यही जगत ब्रह्ममय आनंदमय प्रतीत होता है। जैसे कि कोई बढ़ई है, बढ़ई जब लकड़ी को देखता है तो उस लकड़ी में उसको दिखाई पड़ती है कितने इससे कुर्सियां बनेंगी, मेज टेबल बनेंगे, दरवाजे खिड़कियां निकलेंगी। सामान्य आदमी तो लकड़ी देखता है, पर बढ़ई को वहां पर दिखाई पड़ता है इसमें कितने मतलब कि सामान तैयार हो सकते हैं। ऐसे ज्ञानी इस संसार को ब्रह्ममय देखता है, चिन्मय देखता है, चैतन्य से अभिन्न समझता है, और चैतन्य से अभिन्न समझ करके उसी विराट विश्वात्मा का स्तुति करता है। तो पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि मैं इस विवाद में नहीं पड़ता हूं, बल्कि मैं तो विवर्तवाद का आश्रय लेकर उस ब्रह्म की परमात्मा का स्तुति कर रहा हूं। स्तुति क्यों कर रहे हैं तो पहले बतला चुके हैं।

0: यस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवशिता। स्तुति का कोई प्रयोजन नहीं, बस इतना है कि हमारी वाणी शुद्ध हो, पवित्र हो और अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण से बुद्धि सामने उस परमात्मा को निश्चय करके अपने वाणी की पवित्रता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। एक राजा था, उस राजा ने घोषणा किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास मेरे कोई संतान नहीं है और जो 7 दिन के अंदर आएगा उसको मैं राजा बनाऊंगा। पर एक परीक्षा के लिए कुछ नियम निर्धारण किया, सभी लोग आए तो हजारों की तादाद लग गई। राजा ने सोचा कि राजा तो एक को बनाना है, पर यहां उम्मीदवार हो गए हजार, अब हजारों में से कैसे चुनाव करें, सब बड़े योग्य थे, उनमें से छांट काट करना बड़ा कठिन काम था। छांट काट करने पर भी हजारों की उनकी संख्या हो रही थी। राजा ने नया तरकीब निकाला, उसने कहा देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं तो किसी को राजा बनाऊंगा ही, पर हजारों उम्मीदवार हैं, मैं किसी को दुखी जो है नहीं करना चाहता, सारी हमारी प्रजा सारे जो है राजा बनने लायक हैं, योग्य हैं, मैं सबको राजा बनाऊंगा।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 22. Thank you.

दे रही है, जल एक जैसा बरस रहा है और जो है चंद्रमा भी एक जैसी चांदनी दे रहा है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सबको एक जैसा देता है, लेकिन फिर भी अंतर हो जाता। तो किसको लेकर के कहा? विद्या अविद्या को लेकर के। अब कहा ये क्यों? अविद्या जिसे हम कहते हैं, अविद्या जहां होगी वहां कामना आएगी, अविद्या जहां होगी वहां कामना आएगी, और विद्या जहां होगी वहां कामना की निवृत्ति होगी। कामना जहां आएगी वहां राग और द्वेष आएगा, और राग और द्वेष जहां आएगा वहां अयोग्य पदार्थों से, अयोग्य व्यक्तियों से संबंध होगा, और जहां अयोग्य पदार्थ अयोग्य व्यक्तियों से संबंध होगा तो वहीं पर दुख भी होगा। ये नियम है। लेकिन जब विद्या आती है तो वो क्या करती है? वो कामना को ही समाप्त कर देती। क्यों? फूल क्या करता है? फूल तो उसे तृप्त कर देता, रस भी पिलाता है, हैं? और बढ़िया सुंदर रंग भी दिखलाता है, और कहने लगे सुगंध भी बढ़िया देता। हम वो लोग बोलते त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि, यदि सुगंधि को चाहते हो, सुख को चाहते हो तो उस तीन नेत्रों वालों को के जो है कहा उसका ध्यान करो, उसका आयोजन करो, ये सब संकेत किया गया। और क्या करता है? उर्वारुको मेव है बंधनान मृत्योर्मुक्ति मां मृता, वो अमृत से नहीं किंतु तुम्हें मृत्यु से दूर भी कर देता, ये सब संकेत किया। तो वही यहां संकेत करते कि ये जो अविद्या और विद्या ऐसा नहीं कि अलग रह रही होगी, अलग समय में रह रही होगी, ऐसा नहीं। विद्या और अविद्या प्राणी मात्र के हृदय को ही आश्रय करके विद्यमान है, जैसे उस पौधे को ही आश्रय बना करके कांटा भी विद्यमान है और फूल भी विद्यमान। लेकिन कांटे की विशेषता क्या है और फूल की विशेषता क्या है? ऐसे ही विद्या की विशेषता क्या है और अविद्या की विशेषता संकेत करते। अब जब वह ऋषि इस चीज को देखता है, यह वैविध्य देखता है, सुख दुख को देखता है, इन द्वंद्वों को देखता है, सुख दुख कह दो या द्वंद ही कह दो, और जब द्वंद्वों को देखता है तो द्वंद्वों में फंसकर के बेचारा दुखी होता है, और दुखी होता है तो उस दुख से निवृत्त होना चाहता है, तो द्वंद्वों को वो देख करके और विचार करता है कि इन दोनों से पार ले जाने वाला, इन दोनों से हमें जो है सुख की तरफ ले जाने वाला वास्तव में कौन सा साधन हो सकता, वो कौन सा रस है? जैसे पुष्प के अंदर जो रस है सुख देने वाला, कांटे के अंदर जो रस है वो दुख देने वाला, वैसे ही यहां पर वो कौन सा रस है जो हमें सुख दे सकता है? ऐसे रस की उसके अंदर अभिप्सा होती है, इसलिए कहा विस्पष्टार्थ रुचि न। जो विस्पष्ट रुचि है तो अब जो है अन्य कुछ नहीं चाहने वाले, जो क्या चाहने वाले? उस रस को ही अभिलाषित करने वाले हैं, उस सुख को ही जो चाहने वाले हैं, अन्यत्र अब जिनकी स्थिति नहीं रह गई, अब द्वंद्वों में भी जिनकी प्रियता नहीं रह गई, किंतु वो चाहते हैं किसको? अब फूल में ही आज इच्छा नहीं उनकी, कांटे में भी इच्छा नहीं है, कांटे से घृणा नहीं, द्वेष नहीं, और फूल में राग नहीं, किंतु वो चाहते हैं कि इस फूल और कांटे दोनों को जीवन देने वाला कौन है? यह है विस्पष्टार्थ रुचि। उसके आधार को, उसके मूल को, उसके सार को, उसके मन तत्व को जानने की जो इच्छा वाले हैं उसको कहा विस्पष्टार्थ रुचि ना। जो विस्पष्ट रुचि वाले हैं, ऐसे उन विस्पष्ट रुचि वालों के लिए एक कथा सुना दें आपको और समझ में आ जाएगा ये ज्ञान अज्ञान की स्थिति। सारा संसार क्या है हम लोग सुनते तो रहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति, और यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने,
ये हम लोग कहते हैं।

और भगवान ने कहा, उसका अनुवाद हम लोग भी करते। अब इसको कैसे समझा जाए, तो इसके लिए कथा सुना दें, कथा से जल्दी समझ में आ जाए। एक वृद्धावती नाम की नगरी थी, उस नगरी का जो राजा था, उस राजा का नाम था अज्ञान चंद, और उसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था अबुध सिंह। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरि राम। ये सब कल्पनाएं ही हैं, लेकिन कल्पना क्या करती है? माना देवदत्त की मजदूरी कर रुपए है, ये कल्पना ही तो की। मैथमेटिक्स गणित के अंतर्गत आप कल्पना करते हो, माना कर रुपए या 100 रुपए, लेकिन वो मान्यता आपको कहां ले जाती? जब उसकी नियमबद्धता के अनुसार चलते हो, उसके फार्मूले के अनुसार चलते हो, उसके सूत्र के अनुसार चलते हो, तो वो कहां ले जाती है? तो आपको जो उसकी सही मजदूरी है वो निकल करके सामने आ जाती, और वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में यदि प्रारंभ में थोड़ी सी त्रुटि आ जाए, भूल आ जाए, तो क्या होता है? वो भूल है चक्रवृद्धि ब्याज का ही मतलब 2 दूनी 4 और 4 दून 4 चौकू 16, तो मतलब वो कई गुना बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से थोड़ी सी भूल हमारे जीवन में आ गई तो वो भूल क्या बन जाती? महान पुलंदा बन जाता। और यदि जो है हम मान्यता ही करके चल पड़े, लेकिन मार्ग सही है, भूल नहीं हो रही है, तो क्या होता? तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर देते, लक्ष्य पर पहुंच जाते। ठीक इसी प्रकार से यह संसार है, यदि विद्या के नियम के अनुसार हम चलते हैं तो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। वो सार क्या है? और वहीं कहीं अविद्या आ गई, प्रकृति आ गई, माया आ गई, भ्रम आ गया, भ्रांति आ गई, भूल आ गई, तो वो क्या करेगी? तो कह दिया है 84 लाख की चर्चा करते और पुनरप करते, तो ये चक्कर से छूटने वाला, तब ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बढ़ता ही रहता। इसलिए संकेत किया कि वो जो हरिराम पंडित था और उस पंडित का एक सेवक और था, बढ़िया खा पी करके खूब मोटा ताजा हो गया था, क्योंकि वही पंडित लोग जो प्रवृत्याही करते हैं, बढ़िया माल आता है, तो नौकर भी जो होते हैं वो भी बढ़िया खा पी करके स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसका नाम ही था कुशल चंद। ऐसे व्यक्ति की जो शरण ले लेता है, उसके आश्रय में रहता है, वो भी कुशलता को प्राप्त हो जाता है, ये समझ लेना। तो उसका नाम था कुशलचंद। अब ये तो था वृद्धावती नगरी, अज्ञान चंद का नाम का राजा, प्रधानमंत्री अबुध सिंह, हरिराम जो है उसी नगरी में एक सामान्य पंडित रहता था और उस पंडित का सेवक था कुशलचंद। लेकिन उस नगरी का नियम बोला विलक्षण था। क्या नियम था? जो भगवान गीता में कहते या निशा सर्वभूतान, उसके यहां नियम था कि दिन को रात्रि कहते थे और रात्रि को दिन कहते, ये उसके यहां नियम था। अब जब ये नियम था तो उसकी नगरी में एक बार एक विदेशी पर्यटक आया भ्रमण करने के लिए। आया जब विदेशी पर्यटक, तो उसने बाजार में एक दीवार के पास में जाकर के एक खड्डा खोदा और वहां पर दाल बाटी, उसने अग्नि प्रज्वलित करके दाल बाटी बनाई। खाने के लिए ही बेचारा बैठा हुआ था, तब तक उस नगरी के जो कर्मचारी थे वो आ गए और उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो है ऐड़ा लगाया है, तुम्हारा चोरी करने का इरादा है। दीवाल काटते हैं ना, पहले चोर क्या करते थे? दीवाल काट देते थे।
तुमने एड़ा लगाने की कोशिश की है और जो है तुम चोरी करने का इरादा था। उसने कहा, भले आदमी, चोर कहीं दिन में एड़ा लगाता? उसने कहा, ये सब कुछ नहीं, तुमको पता नहीं, हमारे यहां दिन को रात्रि और रात्रि को दिन कहा जाता, इसलिए पकड़ के ले गया। राजा ज्ञानचंद के पास ले गया, जाके वहां खड़ा कर दिया और उसके सारे आरोप को, अपराध को उसने कह सुनाया। कह सुनाया, जब अज्ञानचंद ने सुना तो अज्ञानचंद ने जो है ऑर्डर दे दिया, कहा इसको फांसी लगा दो। जब कहा फांसी लगा दो, सूली पर चढ़ा दो इसको, तो उसका प्रधानमंत्री जो था अबुध सिंह, उसकी तरफ देखा उसने। अब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज एक बात है। कहा, क्या? अपनी नगरी में सौभाग्य से एक नई सूली तैयार हुई है और जो नई सूली तैयार हुई है वो बड़े पुण्यों से हुई है और शुभ मुहूर्त में बनी है, इसलिए ऐसा करो, पहले उस सूली का प्रयोग भी हो जाएगा तो पहले उस सूली पर किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाए, उसके बाद इसे देखा जाएगा। राजा ने मूड हिला दिया, ठीक, प्रधानमंत्री हमारा बड़ा निपुण है। कहा, ठीक है। कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही। तो राजा ने तुरंत जो है कर्मचारियों से कहा, कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। अब वो लोग गए तो वो कुशल चंद ही मोटा ताजा था। कहा, उसी को पकड़ के ले आए। अब जब उसको पकड़ करके लाए और राजा ने जैसे ही देखा मूड हिलाया, कहा, बहुत अच्छा, हम जैसा चाहते वैसा ही अच्छा प्रयोग हो जाएगा, अच्छा आदमी लाए। और जब कुशल चंद ने ये देखा और कहा कि इसको सूली पर चढ़ाया जाए, कुशल चंद ने कहा, महाराज सूली पर चढ़ने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन यह सूली देख करके हमारे हृदय में ऐसा आ रहा है कि यह तो बड़ी रहस्यपूर्ण सूली, इसकी तो बड़ी विलक्षण महिमा है, पता नहीं किस मुहूर्त में बनी, और महाराज यदि हमारी बात को प्रमाणित न माने तो हमारे पंडित जी बड़े जानकार हैं, आप उनको बुला करके उनसे पूछ लीजिए। राजा ने कहा, ठीक कह रहा, जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। गए हरिराम के पास, जैसे ही सिपाही गए तो सिपाहियों ने साहब बतला दिया, तो वो समझ गया कि राजा जो है मुंह वैचित्ते मोहाव्रत है, और सुनते ही रहते हिदाते मोह कल्लम, वो तो कल के समान है, दलदल के समान। तो राजा को समझता था कि ये मोह से युक्त है, मूड राजा है, इसलिए वो चल पड़ा वहां से और चल करके थोड़ी दूर ही आया और दूर से ही हरिराम ने जो है लंबी दंडवत करना शुरू कर दिया, सूली को देख करके सूली को दंडवत करना शुरू कर दिया। और सूली को जब दंडवत करना शुरू किया तो जब तक वहां पहुंचा तो सैकड़ों दंडवत उसने कर डाले और सूली के पास जाकर के तीन प्रदक्षिणाएं लगाई और बड़े ही प्रसन्न चित्त से कहने लगा, आज मेरा अहो भाग्य। राजा ने उसकी इस क्रिया को देखा, राजा पूछने लगा, पंडित जी ये सूली है और इस सूली पर आपको चढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप सूली पर चढ़ने के लिए इतने प्रसन्न चित्त, इतने उत्सुक क्यों हैं? उसने राजा से ऐसे कहा मानो उसने उनकी राजा की बात सुनी ही न हो। और पंडित जी ने कहा, महाराज क्या बतलाऊं, आज मेरा अहो भाग्य है, ये सूली नहीं है, ये तो साक्षात देव है। और ये साक्षात देव है, कौन सा देव है? अरे प्राचीन काल में यही भगवान शिव की नगरी में थी, भगवान शिव के पास थी, इसलिए तो उनका नाम सूलपाणी पड़ा, प्रमाण भी दे दिया, उनका नाम ही है सूलपाणी।